0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
1: 2 या 4?
0: 4।
1: कब तक वापस लौटेगा?
0: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
1: 4 या 5? 5।
2: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
3: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
4: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
3: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Drive home a brand new Jetter. Buy now, pay next year. Zero VAT or zero interest. With EMIs starting from just 966 dirhams per month.
1: Ready, throw!
2: Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Mm. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's, order now.
3: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
4: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग साबित कर 6 मिनट।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मिश्रा विद भुलिया, दैट एग्जैक्टली शुड बी द मंत्र ऑफ एवरी डे इन द मॉर्निंग, या जो भी कल हुआ उसे भुलिया, इट्स अ स्टार्ट फॉर ब्रांड न्यू डे।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: या आई नो व्हाट यू थिंकिंग, इफ यू आर अ फ्रांस फुटबॉल फैन, यार ऐसे कैसे भुलिया यार, इट्स गोना टेक सम टाइम टू भुलिया यार, व्हाट हैपेंड यस्टरडे वाज कंप्लीटली अनबिलीवेबल एंड टोटली वर्थ यू नो माय नाइट टाइम, इट वाज वे पास्ट माय बेड टाइम, लेकिन फिर भी मैं उठ के मैच देखा, मैंने कहा लगाऊंगा मैं तो स्पेन वर्सेस फ्रांस देखूंगा, ऑल्दो आई मीन टुडे अकॉर्डिंग मी इज द बिगर गेम, लेकिन या मैन व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट, फ्रांस वर्सेस स्पेन। एंड हियर इज वेयर इट गेट्स फनियर, राइट, बिकॉज कल एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें जो 9 LLMs हैं, राइट, लाइक चैट जीपीटी है, क्लॉड है, ऑल ऑफ दीज वर आस्क्ड टू प्रिडिक्ट हु द यू नो फीफा वर्ल्ड कप विनर्स गोना बी, सो 5 आउट ऑफ द 9 सेड फ्रांस। या सो आप सोच लो, आई मीन दैट्स गुड न्यूज इफ यू आस्क मी, नॉट दैट फ्रांस इज लॉस्ट, द फैक्ट दैट द LLMs मेड अ रॉन्ग प्रिडिक्शन। अभी भी थोड़ी इंसानियत बची है मेरे भाई। जब तक फ्रॉम अ कॉकटेल 2 इज कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल, डोंट फॉरगेट दिस इज द अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट, अप अंटिल 8 AM आपके पास मौका टू रिक्वेस्ट फॉर योर फेवरेट सॉन्ग, एक ऐसा गाना जो आपकी नहीं सारी UAE की नींद भगा सके। व्हाट्सएप दैट सॉन्ग टू मी, दैट रिक्वेस्ट 0543091062 पर।

0: ए बुड्ढे,
1: नमस्ते।
0: पहले आप वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं होंगे।
1: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा? आप बात बताइए।
0: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
1: नहीं नहीं नहीं, आप तो खामखा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
0: गुस्सा आ जाएगा, आपका आ रहा, गुस्सा आ जाएगा,
2: आ रहा है। देखिए,
1: ये गुस्सा नहीं है।
3: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
4: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
5: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
4: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
5: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
6: अलराज है। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
4: चलो चले अलराज।
3: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
7: Namaste.
8: Hola.
7: Assalamualaikum.
8: Bonjour.
9: Ni hao.
8: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
10: InsurersMarket.ae. Flights booked, bags packed, brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, insurancemarket.ae.
11: Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2.
3: The Beat of Bollywood.
12: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
13: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
3: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
14: Morning at 7:23 on this Wednesday, ki subah 15th of July. Partly sunny start to this Wednesday morning. Humidity at 61%, 36 degrees Celsius right now. Winds blowing at 19 kilometers per hour. Highs of 40, lows of 34 degrees.
3: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। नहीं सुनता।
1: Oh, yeah. ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बेशरम रंग शिल्पा राव ऑन द वोकल्स. दिस कुड बी वन ऑफ द सॉन्ग्स इन आवर समर सॉन्ग कॉन्टेस्ट, राइट? आप जानते हैं क्या हो रहा है. इट्स जस्ट अ चांस फॉर यू, जस्ट लाइक द बिगेस्ट थिंग दैट्स हैपनिंग ऑन द रेडियो, एन अनमिसेबल स्टेकेशन ऑफ रिक्सॉस अलमायरेड रसल खेमा जीतने का मौका.
1: पार्टिसिपेट इन समर सॉन्ग कॉन्टेस्ट एंड विन अ फैमिली स्टेकेशन. Big summer surprises. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Hospitality partner Rixos Almyrid Rasal Khaima.
0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है. We've got about 1.5 hours for you to get your entries in. All you got to do is just type out BSS for big summer surprises. BSS space देकर अपना नाम, उसे WhatsApp करते रहो. It is absolutely free. 054-309-1062 पर. That's the number to WhatsApp. 054-309-1062. क्या लिखना है आपको? BSS for big summer surprises space देकर अपना नाम. Keep WhatsApping and then we're going to play the summer song contest around 9:10. फिलहाल द गुड न्यूज कमिंग इन दिस मॉर्निंग वेंसडे की सुबह. व्हाट्स द वन थिंग एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट? व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आज आपके डेफिनेटली ये होगा. एनीबडी फ्रॉम नवी मुंबई लिसनिंग टू मी राइट नाउ, ग्रेट न्यूज. नवी मुंबई अबू धाबी फ्लाइट आज से शुरू होगी 15th of July, एंड इट्स गोना स्टार्ट ट्वाइस वीकली बिफोर इंक्रीजिंग लेटर इन द मंथ. सो मुंबई पीपल नाउ हैव वन मोर वे टू से आई एम जस्ट कमिंग फॉर टू डेज. लौटेंगे तो 6 सूट के साथ में.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.
0: It was a so-so return to cricket for Rohit Sharma, Virat Kohli, Jasprit Bumrah yesterday. Lekin bawajood iske, we managed to win the first ODI. More on that coming up right here on The Big Breakfast.

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से
1: Sia, self-drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: जब बच्चों से पूछते हैं कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, देन इज द आंसर वन ऑफ द टॉप आंसर स्टिल एस्ट्रोनॉट.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दैट्स बीन लाइक द बिगेस्ट क्लीशे, राइट? अगर किसी बच्चे से पूछो क्या बनोगे, एस्ट्रोनॉट, नंबर वन एस्ट्रोनॉट. बट वेरी फ्यू बच्चे उसमें से एक्चुअली गो एंड रियलाइज देयर ड्रीम्स. इन द लेटेस्ट देसी ओरिजिन का बच्चा इज अनिल मेनन. Anil Menon is the Indian origin NASA astronaut who is at the ISS right now. The International Space Station successfully arrived at the ISS on board Russia's Soyuz MS-29 spacecraft. He's got two cosmonauts. Kitna amazing hai na? कि रशिया वाले कहते हैं कि हम लोग नहीं, हम लोग क्योंकि अमेरिका कह रहा है एस्ट्रोनॉट, हम लोग करते वही हैं, लेकिन हम लोग उसको कॉस्मोनॉट के नाम से बुलाएंगे. सो टू कॉस्मोनॉट्स एंड वन एस्ट्रोनॉट, ऑल्दो दे डू एग्जैक्टली द सेम थिंग, आर एट द आईएसएस राइट नाउ. 8 महीने तक अनिल भाई वहाँ पर रहने वाले हैं, बेड एंड ब्रेकफास्ट. एंड What is he going to do there for 8 months? You're asking. वो cutting edge research करने वाले हैं on his own body, यानी कि the effects of long duration space flight on the human body क्या होता है. AI assisted medical diagnostics, semiconductor manufacturing in microgravity, technologies that could support future missions to the moon and Mars. That's what they're going to be doing out there, researching out there. April 2027 में अब ये वापस आएंगे. I know what you're thinking. Any scientists in need for the long term effects of getting stuck in traffic, please get in touch with us. Terrible version of Didi from Durandar the Revenge coming up in just a while. This is the Big Breakfast with me, Sid.

0: of Bollywood.
1: Spin big with Big Ticket.
2: 20 million dirham grand prize.
1: 1 million dirham big spin chance.
2: 5 consolation prizes and weekly e-draws.
1: Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
0: The Big Breakfast brought to you by Jator UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
4: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें। सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल, जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
5: Wow, your hair color looks stunning.
6: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
5: Yeah, right.
6: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
5: Really?
6: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
5: I'm buying it right now.
6: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
0: The Big Mix with Zora. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 8:07।
1: Bollywood.

0: Bollywood. क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें। सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल, जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
1: वाओ, योर हेयर कलर लुक्स स्टनिंग।
2: थैंक्स, आई डिड इट मायसेल्फ दिस मॉर्निंग इन 5 मिनट्स।
1: यार राइट,
2: नो इट्स हिना स्पीडी इजी हेयर कलर दैट्स मेड इन इटली। इट्स अमोनिया फ्री एंड एनरिच्ड विद हिना एक्सट्रैक्ट एंड आर्गन ऑयल।
1: रियली?
2: या, एंड विद अ इजी कॉम एप्लीकेटर इट जस्ट टेक्स 5 मिनट्स।
1: आई एम बाइंग इट राइट नाउ।
2: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy.
0: The Big Breakfast brought to you by Zuleika Hospital. Your health matters.
3: Namaste.
4: Hola.
3: Assalamualaikum.
5: Bonjour.
6: Ni hao.
7: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
8: InsuranceMarket.ae. We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
9: Ready for an upgrade? Drive home your dream SUV with incredible offers from Jetour UAE. Buy now, pay in 2027, VAT on us, or 0% interest. Plus, enjoy a 1 million kilometer warranty. Get up to 10,000 dirhams cash back and free insurance on select models. With monthly installments starting from just 966 dirhams, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Alain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. TNCs apply.
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
12: गर्मी तो है ही, लेकिन साथ में humidity भी quite high, especially at night. There is a weather warning for this entire week by the NCM saying that visibility might get affected because of the fog के chances all this week. It's 36 degrees Celsius right now, nice and sunny right now. Humidity at 57%, winds blowing at 19 kilometers per hour. Highs of 40 right now, lows of 34 degrees Celsius.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: From Welcome to the Jungle coming up in just a while. Saath mein some very interesting updates from the Museum of the Future. Keep it locked to The Big Breakfast with me, Sid.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर।

0: आई एम लिटरली फ्लडेड विद व्हाट्सएप. सो क्यों ना हो यार, चल रहा है समर सॉन्ग कॉन्टेस्ट. बिग समर सरप्राइजेस.
1: पार्टिसिपेट इन समर सॉन्ग कॉन्टेस्ट एंड विन अ फैमिली स्टेकेशन. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almyrid Rasal Kaima.
0: अभी भी आधा घंटा है आप लोगों के पास टू फ्लड मी इवन मोर विद योर व्हाट्सएप. 0543091062 इज द नंबर. क्या करना है आपको? BSS फॉर बिग समर सरप्राइजेस. BSS स्पेस योर नेम, कीप व्हाट्सएपिंग इट टू 0543091062. नो SMSs एंड नो कॉल्स प्लीज. व्हेन यू व्हाट्सएप योर नेम गोज इनटू द ड्रॉ एंड देन वी कुड बी प्लेइंग अ समर सॉन्ग कॉन्टेस्ट इन जस्ट अबाउट हाफ एन आवर फ्रॉम नाउ. एंड अगर आपका नाम ड्रॉ में चला गया तो आप जीत सकते हैं दिस अमेजिंग अनमिसेबल स्टेकेशन एट द रिक्सॉस अलमायरिड रसल खेमा. साथ में ऑन द स्पॉट प्राइजेस टू मूवी टिकट्स एंड एन FNB वाउचर एज वेल.

0: T20 सीरीज तुम मेरे ना हुए ना सही ODI में देख लेंगे।
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: ऐसा लगता है मतलब सारे पाप धुल गए कि जो व्हाइट वॉश हो गया था सब कुछ वो रिवर्स व्हाइट वॉश की नौबत नहीं नहीं इतना भी होपफुल मत हो बट या वी हैव वन द फर्स्ट ODI अगेंस्ट इंग्लैंड इट वॉज आई मीन नॉट रियली a very memorable out you know return to cricket for Roko and Mr. Bumrah lekin yeah I mean just the presence unka jo ek team mein presence hai that is enough to kind of inspire confidence right so man of the match of course Akshar Bhai Patel Bapu because he took 4 for 62 in 9.5 overs and then scored an unbeaten 57 as well so yes Akshar Bhai Patel is man of the match yesterday England scored 258 बैटिंग पहले करते हुए 47.5 ओवर्स में ऑल आउट हो गए वो जो रूट स्कोर्ड अनबीटन 76 लियम डॉसन 68 बेन डकेट द ओपनर वेंट फॉर 43 एंड लाइक आई सेड अक्षर भाई 4 प्रसिद्ध कृष्णा टुक 2 विकेट्स गुरनूर ब्रार नाम के जो ये मिस्ट्री पेसर हैं ही टुक 2 विकेट्स एज वेल एंड देन शुभमन गिल प्लेड कैप्टन इनिंग इससे पहले कि वो रिटायर्ड हर्ट हो गए एंड देन अक्षर पटेल वॉशिंगटन सुंदर अनबीटन टुवर्ड्स द एंड टू जस्ट टीयर इंडिया कंफर्टेबल विन 262 फॉर 4 विद मोर देन 4 ओवर्स टू स्पेयर सो दैट्स व्हाट हैपेंड In the first game in the India England ODI series. Filhal Awarapan 2 ka agar aap intezar kar rahe hain, here's the first super hit song Mithun ka music hai. Ve Junoon is the name of the song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: नौ बजकर 10 मिनट फ्रॉम द फिल्म एक दीवाने के दीवाने दैट इज दिल दिल दिल एंड आई हैव गॉट समबडी ऑन द फोन लाइन जिसकी बातें सुनकर लगता है हाँ यार मतलब अभी भी रेडियो के दीवाने इतनी ज्यादा
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
0: आई मीन दैट्स द पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट इट आई हैव गॉट वैलरी विद मी ऑन द फोन लाइन वैलरी से जब मैंने कहा गुड मॉर्निंग तो उन्होंने साथ में हमारे तीन और कॉम्पिटिटिव स्टेशन के नाम ले लिए वैलरी Good morning. How are you doing?
2: Hi, Sid. Good morning.
0: Please don't mention the frequency or the radio ka, station ka naam because you are horrible at that. Valerie, किसी की सगी नहीं है भाई. मतलब जितने भी competition के लोग सुन रहे हैं, Valerie आपको call करेगी तो उससे पहले हमारा नाम लेगी. So, oh my God, yeah, Valerie. Are you one of those people who just keep switching stations and finding out कौन सा सबसे ज़्यादा price दे रहा है मैं उसके साथ?
2: Yes, I want to do something over the summer holidays. I'm just tired with work. I just need a break.
0: चलो, I mean, you've proved that you are the, I want to say desperate, but I don't want to use that word. Let me just use the other D word. You are the most deserving person. देखते हैं कि नहीं, देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं. But I've got Pawan with me on the phone line, on the other line, who's waiting patiently. Pawan साहब, क्या हाल चाल हैं?
3: बस बढ़िया.
0: बढ़िया या बहुत बढ़िया?
3: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया.
0: हाँ, बहुत बढ़िया बोल दिया तो फिर एक्सपेक्टेशन हाई हो जाएंगे. फिर मैं कहूंगा कि नहीं, फिर छोड़ो, क्या जीतना, वैलरी को जिता दो. नहीं, ऐसा नहीं है. पवन सीम्स टू बी डिस्ट्रैक्टेड. पवन, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते बिकॉज इट इज कॉन्टेस्ट टाइम, समर सॉन्ग कॉन्टेस्ट के रूल्स. दोनों ध्यान से सुनो. आर यू गाइज रेडी?
3: Yes, ready.
0: है ना, क्या होगा कि मैं आपको तीन गानों के हिस्से सुनाने वाला हूँ. ऑलराइट, पोर्शंस ऑफ थ्री सॉन्ग्स. दीज आर ट्रैवल सॉन्ग्स. आज सुबह के जो गाने हैं वो ट्रैवल सॉन्ग्स हैं. जैसे आपने गाना सुना और आपको लगता है कि आपको गाने की फिल्म का नाम पता है, तो आपको अपना नाम बजर की तरह यूज करना है. बट उससे पहले यू गॉट से बिग एज वेल. ऑलराइट, सो बिग वैलरी या फिर बिग पवन. डन डील? लेट्स स्टार्ट. नहीं, पहले हम बजर टेस्ट करेंगे.
3: Okay.
0: Okay, on the count of three. Valerie, you still there?
2: Big Valerie.
0: Okay, let it. 1, 2, 3, now go.
2: Big Valerie.
0: Ah, very good. That's how competitive I want this to be. Now, if you guys are ready, should I start the contest?
2: Yes.
0: Okay. Koi doubt out, Nina?
2: No.
0: Pehla gana hai ye wala. Who can tell me the film of this song? मोहित चौहान, इट इज अ ट्रैवल सॉन्ग. फिल्म में भी काफी ट्रैवलिंग. देयर वाज दीपिका पादुकोण इन दिस. और अरे भाई,
2: दीपिका पादुकोण एंड रणबीर कपूर. आई नो बट आई कांट गेस द नेम ऑफ द मूवी.
0: YJHD. पवन,
3: नॉट गेटिंग द नेम फिल्म.
0: ओए यार, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? यार ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल जो बॉलीवुड के बिल्कुल पैदल फैन जो है वही कॉल करते हैं मेरे को. यार वाई, मैंने शॉर्ट फॉर्म भी बोल दिया, YJHD. ट्रेन, दीपिका, रणबीर. हेलो
3: बिग पवन, ये जवानी है दीवानी.
0: अरे चलो, फाइनली पवन, 1-0 इन फेवर ऑफ पवन. फाइनली, व्हाट डू यू डू? यू गूगल सर्च इट और यू आस्क्ड अ कॉलीग व्हाट? Don't reveal the trade secret. I don't want to know. Okay, next song. Next song is this one. Who can tell me the film of this one?
2: Big Valerie. Swadesh
0: is the correct answer, which means we are heading into extra time. We are heading into the final kickoff, the penalty shootout. Jisne bhi is film ka naam bata diya, that person is going to get their name into the draw. Are you guys ready?
2: Ready.
0: मुझे क्यों लग रहा है कि मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी. बट ओके, दिस इज द सॉन्ग. टेल मी द फिल्म का नाम.

0: जब आप लोग को इलाही नहीं आया तो हैरत बाय लकी अली क्या ही आएगा। मैं क्लू देता हूँ, प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के अंदर थी। ओए क्या बात है, यू डिड इट वैलरी।
1: थैंक यू
0: माय, इट्स अंजाना अंजानी। वैलरी ने यू, दिस इज द एडवांटेज ऑफ सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर सिस्टम। मतलब फटाफट से गूगल सर्च करो यार, हु केयर्स इफ यू आर अ बॉलीवुड फैन और नॉट। पवन, मुझे लग रहा है लेकिन पवन वाज फार अवे फ्रॉम हिज डेस्क। हां पवन, कहां पे हो आप इस वक्त? बाहर आ गए थे ना, बाहर आ गए थे, यही तो गलती कर दी आपने। बट चलो, थैंक यू सो मच फॉर यू नो व्हाट्सएपिंग सो ऑफन पवन। अभी भी दो और मौके हैं आपके पास, तो कीप व्हाट्सएपिंग योर नेम एंड दैट बीएसएस लिखना ना भूले, बीएसएस स्पेस योर नेम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच पवन। बट ओवर टू वैलरी, कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: ऑफकोर्स अच्छा लग रहा है, ऑफकोर्स अच्छा लग रहा है। मुझे मन कर रहा है कि मैं आपको याद करवाऊं, थोड़ा रट्टा मरवाऊं कि हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है, लेकिन आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क बिकॉज़ वी आर लाइव राइट नाउ। थैंक यू भगवान, दैट इज माय प्राइस फॉर टुडे। और मेरा नाम क्या है? बहुत रिस्क ले रहा हूँ। थैंक यू वैलरी, थैंक यू, यू गॉट इट राइट। आई डोंट केयर, दिस करेक्ट आंसर इज मच मोर वैल्यूएबल देन द प्रीवियस वंस, बट कांग्रेचुलेशंस। आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है आज सुबह? द बेस्ट पॉसिबल थिंग, योर नेम गोज इन टू द ड्रॉ टू विन दिस अनमिसेबल स्टेकेशन एट द रिक्सॉस अलमायरिड इन रसल खेमा, साथ में ऑन द स्पॉट दो मूवी टिकट्स एंड एन F&B वाउचर एज वेल। कांग्रेचुलेशंस।
1: थैंक यू, थैंक यू।
0: और आपने पहले ही कह दिया था कि यू रियली रियली डेस्परेटली वांट टू गो फॉर दिस स्टेकेशन, सो वी ऑल गॉट आवर फिंगर्स क्रॉस फॉर यू। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।
1: यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दैट इज वैलरी, थैंक यू फॉर मेकिंग माय डे।
0: थैंक यू सो मच टेकिंग पार्ट इन आवर कॉन्टेस्ट। आप भी मैसेज करते रहो, व्हाट्सएप करना है आपको, मैसेज नहीं ना ही कॉल, व्हाट्सएप कीजिए बीएसएस स्पेस योर नेम एंड कीप व्हाट्सएपिंग इट टू 0543091062। बिग समर सरप्राइजेस मेड पॉसिबल बाय प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सॉस अलमायरिड रसल खेमा, एंड डोंट फॉरगेट कल सुबह एक बार फिर ये मौका फॉर यू टू गेट योर नेम इनटू द ड्रॉ। And don't forget, this is the last week of the big summer surprises.

0: And that's exactly what I'm saying to our friends at Jetour. Thank you very much to Jetour.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: The Big Breakfast brought to you by Jetour. If you're ready for a serious SUV upgrade, check out the latest deals from Jetour. You can drive home a brand new Jetour with 0 VAT or 0% interest. And the big one, 1 million kilometers key warranty. Enjoy up to 10,000 dirhams ka cash back and free insurance on selected models. And the best part is, buy now and pay next year. Your dream SUV could be yours with EMI starting just 966 dirhams a month. Head to Jetour showrooms, Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Alain mein, and take it for a spin today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
2: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
3: उदी बाबा।
1: बिग 106.2 क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
4: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
5: Spin big with Big Ticket.
6: 20 million dirham grand prize.
5: 1 million dirham big spin chance.
6: 5 consolation prizes and weekly e-draws.
5: Buy now at bigticket.ae.
7: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
8: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
9: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरा, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे 3 to 6 PM, क्योंकि अगर जोरा ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
4: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Zora. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
0: Good morning, it's 9:44 on the clock on this Wednesday. Let's take a look sabse pehle at the capital, Abu Dhabi. Yahan par aapko थोड़ा बहुत हल्का बुल्का ट्रैफिक एट मुसफा इंडस्ट्रियल एंड एवरीथिंग इट सीम्स टू बी क्वाइट स्मूथ गोइंग। बनियास की तरफ रोज ही ट्रैफिक होने लगा है मफराक इंडस्ट्रियल एंड दिस इज E11 हेडिंग नॉर्थ। इन केस यू स्पॉट समथिंग गिव मी अ कॉल 800-1062 पर। चलते हैं दुबई शारजा की ओर। थिंग्स आर लुकिंग मच मच बेटर। 311 हेडिंग साउथ, इज अ 6 मिनट डिले है बोथ दीज आर्टरीज गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा। D62 पे अभी भी ट्रैफिक है एंड देन एक अनयूजुअल ट्रैफिक जो अभी भी है सऊदी जर्मन हॉस्पिटल अजमान से निकल के हेडिंग साउथ, यू फाइंड 4 से 5 मिनट की देर।
4: Sia, self-drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 10:10।
1: Bollywood.

0: So 30 years after the original release, Khalid, Algerian singer singing Didi, became a super hit in India. 30 साल के बाद भी अभी currently there are two versions of that song. There are in our playlist. एक धुरंधर का Didi और एक ये Airlift का दिल चीज तुझे दे दी.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: We are playing the Big Bollywood quiz. I've got Tanzeel with me on the phone line. Good morning, Tanzeel साहब, क्या हाल चाल है?
2: गुड मॉर्निंग सर, मैं ठीक हूँ, बताइए आप कैसे हैं?
0: सर होंगे आप, मैं सर नहीं हूँ. सर वार आप ना अपने क्लाइंट्स के लिए यूज रखे, मेरे साथ दोस्तों वाली बात करेंगे आप, ठीक है?
2: ओके मिस्टर
0: सेठ, रिस्पेक्ट तो लगाना ही है आपको, है चाहे आप डिजर्व करता हो या नहीं करता हो. सेल्स वालों की एक आदत बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को यार, मतलब है ना, आधा काम तो आपको पहले ही हो जाता है मिस्टर या सर ये लगा के.
2: सर लगाने में
0: डू एक्चुअली, बट ये तो हो गई काम की बात क्योंकि हर कोई करता है, तो बट डू एक्चुअली अग्री विद दिस सर कल्चर? ये सर कल्चर होना चाहिए या आपको लगता है कि ये नहीं, अंग्रेज छोड़ गए थे?
2: मुझे लगता है अंग्रेज छोड़ गए थे,
0: है ना,
2: ये मेरा ओपिनियन है.
0: एंड अंग्रेज, उनसे बात करो तो खुद ही वो चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना उम्र में आदमी, वो सर्वर नहीं करते बिल्कुल, वो नाम से ही पुकारते हैं.
2: नाम से ही पुकारते हैं, कभी भी हमारे भी कुछ कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ नाम ही लेते हैं, हमारे सीनियर होगा काफी जो सीनियर है,
0: हाँ.
2: वो कभी सर्वर नहीं लगाते आके.
0: डेविड एटनबरो 101 साल के हो गए हैं, उन्हें लोग डेविड ही कहते हैं. दद्दू ताऊ जी कुछ नहीं बोलते भाई. सर तब लगाते जब उनको वो नाइट वेड हो गया होता है. बट एनीवेज, ये तो हो गई अंदर की बात. लेकिन एक ऐसी फिल्म है, देखो फिल्म्स हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स, राइट? लेकिन कुछ ही ऐसी फिल्में होती हैं जो कि रियल लाइफ को इंस्पायर करती हैं. उनमें से एक फिल्म आज की बर्थडे फिल्म है, यानी कि 15 साल पहले आज ही के दिन एग्जैक्टली डॉट रिलीज हुई थी. तीन दोस्त एक ट्रिप पे निकले जिसने पूरी कंट्री का टूरिज्म बजट रेवेन्यू 81% से इंक्रीज कर दिया था. व्हाट फिल्म एम आई टॉकिंग अबाउट?
2: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा.
0: एब्सोल्युटली करेक्ट. ये पासेज आपको इबारा नहीं दोबारा मिलेंगे, यानी कि दो दो पासेज आपने जीत लिए हैं. ओपन मूवी टिकट जाकर जब भी टाइम मिले सर आप जाकर देखिए.
2: सेल्स के उदित नारायण, अगस्त में मैं भी स्पेन जाऊं इसी के लिए.
0: अरे बाप रे बाप, टेल मी मोर भाई, क्यों?
2: क्योंकि मेरे फ्रेंड जर्मनी में है तो वो लोग बोल रहे हैं कि जो इवेंट आ रहा है ना अभी स्पेन में इसका के जो है ना
0: टोमेटिना फेस्टिवल, लेट मी गेस.
2: जी एग्जैक्टली,
0: वो टमाटर मार. वेरी गुड यार, वेरी गुड.
2: हो सकता है जाने का हमारा, हम लोग का प्लान बन रहा है यहाँ से.
0: मतलब आपकी शादी वादी हो गई या क्या सीन है?
2: नहीं अभी सिंगल ही सर.
0: हाँ,
2: शादी होती तो कहाँ मिलता जाने को.
0: नहीं हो सकता है उसमें भी आप फिर हाँ उसमें और पापड़ बेलने पड़ते हैं उसमें. आई एम श्योर देयर वुड हैव बीन अ मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी. अभी आप मतलब अकेले हो तो फिर
2: जी. एक्चुअली मेरा फ्रेंड साथ में जा रहा है, उसकी वाइफ ने बोल दिया अगर तुम जाओगे तो मुझे साथ में लेके जाना है वरना मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी.
0: तो फिर फ्रेंड, लेट मी गेस, तो फ्रेंड आ ही नहीं रहा.
2: वो आ रहा है लेकिन वो बोल रहा है मैं कुछ और प्लानिंग करूंगा कंपनी से रिलेटेड.
0: भाई इस कहानी का पार्ट टू क्या होता है प्लीज बुझाना, प्लीज. आई एम वेरी क्यूरियस, अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना वाली बात है ये, है ना. तंजील आपसे बात करके मजा आ गया, थैंक यू सो मच. मे यू फोड़ो ऑल द क्लाइंट्स जिन पे आपकी नजर है, जिनको अभी सर कह के बुला रहे हो ना, आई होप के वो सारे के सारे आपकी स्पेन के बजट में कंट्रीब्यूट करें, ये मेरी उम्मीद है. हैव अ वंडरफुल टाइम एंड कांग्रेचुलेशंस, एंजॉय योरसेल्फ.
2: थैंक यू सो मच. थैंक यू
0: तंजील, ये हमारे आज के विनर हैं. डोंट फॉरगेट, रोज सुबह मौका टू फ्लेक्स अ बिट ऑफ बॉलीवुड मसल, वॉक अवे विद टू ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज. अरिजीत सिंह विद हाँ मैं गलत, कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. इट इज द 15th एनिवर्सरी ऑफ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. गुड मॉर्निंग.
1: बिग

0: 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Your holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
3: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
4: Good morning, 10:17 on this Wednesday की सुबह. रात को काफी ह्यूमिडिटी बढ़ने वाली है एंड विजिबिलिटी माइट गेट अफेक्टेड फॉग एट सर्टेन एरियाज. सो प्लीज ड्राइव सेफली. अगर रात को गेड़ी मारने का प्लान है आपका तो 38 डिग्री सेल्सियस फिलहाल राइट नाउ. नाइस एंड सनी. ह्यूमिडिटी एट 47%. क्वाइट वेल बिहेव्ड. हाइज ऑफ 40, लोज ऑफ 34 डिग्रीज.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: गलत बात तो हम लोग करते नहीं, बिल्कुल 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए इंफोटेनमेंट के मामले में, यू गॉट टू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम 106.2 बिग एफएम, दैट्स आवर हैंडल.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: राइट, आज का पोल क्वेश्चन इज फॉर ऑल द लेडीज आउट देयर, इट्स अ वेरी लेडीज स्पेशल पोल क्वेश्चन. एक रिसर्च के हिसाब से रीडिंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट अट्रैक्टिव hobby in men according to women. Do you agree with this or not? I'm sure you have a strong point of view. Express yourself on 106.2 Big FM. That's our Insta handle. But in the meanwhile, yaad rakhiye, Papa John's and Toy Story 5 pizzas have landed, bringing movie-inspired flavors to your next meal. Try the Space Ranger Roni, loaded with double pepperoni for a bold, meaty bite. Round up your appetite with the Sheriff's Roundup, topped with a barbecue chicken and onions. Reach for the pie and enjoy the delicious combo of Italian sausage and banana peppers. Order any two or more Papa John's and Toy Story 5 pizzas for just 25 dirhams each and get your hands on a collectible with your qualifying order while stocks last. Better ingredients, better pizza. Papa John's, order now.

0: What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze, and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network. Listen to her every day.
1: Mugambo, khush hua.
2: क्या करते हो रोहित?
3: फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ.
2: अरे आज से खेलते हैं. वाह, वेरी नाइस. क्विकली नेम तीन बॉबी देओल की मूवीज.
3: बरसात.
2: अरे वाह. टिन टिन टिन टिन. ये लो, एक में ही खत्म.
3: बिच्छू.
2: अरे हो गया बिच्छू. 5 सेकंड के अंदर फटाफट खेलने वाला गेम है. क्विकली नेम थ्री थिंग्स दैट यू पिक फ्रॉम अ होटल रूम.
3: साबुन, टावल, शैम्पू.
2: अरे है, टावल भी ले जाते हो? हैं, वो अलाउड नहीं होता है. वैसे मैं बता रही हूँ आपको, टावल लेना अलाउड नहीं होता है. हाँ, शैम्पू, सोप आप ले जा सकते हो, टावल मत लेके जाया करो, नाम बदनाम हो रहा है हम सबका. तीन लड़कियों के नाम बताइए जो ए से शुरू होते हैं.
3: आरती, आकांक्षा.
2: अरे है, और आरती आकांक्षा पे गाड़ी रुकी. कौन है आरती, कौन है आकांक्षा?
3: पता नहीं यार.
2: झूठ.
3: नाम आया
2: झूठ. होगी कोई स्कूल कॉलेज वाली पुरानी.
3: हाँ.
2: है ना, तो दोनों थी कि? अच्छा,
3: नहीं.
2: एक थी आरती थी कि आकांक्षा थी?
3: कोई भी नहीं था.
2: कितना झूठ रोहित, कितना झूठ. ऐसी थोड़ा ना हैवी नाम आरती और आकांक्षा आउट ऑफ द ब्लू आ जाएंगे.
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM to 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी. ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: It is .10:30 on the clock and let's start with unusual traffic. यहाँ पर आपको मिलने वाला है, नहीं actually usual traffic ही है. First K Street पर you'll find traffic Alcooz Industrial Third की तरफ जाता हुआ. 5-6 मिनट का traffic तो रोज इतने बजे मिलता ही आपको. Business Bay Metro Station के आसपास की सड़कें quite congested. There's also D71 का traffic picking up right outside Dubai Mall. A bit of congestion D75. Dubai Frame की तरफ eastbound traffic you'll find. Also 311 E11 पर तो आपको साउथ बाउंड ट्रैफिक मिलेगा ही 5-6 मिनट की देर. देन देयर इज बेरूत स्ट्रीट गेटिंग अ बिट कंजेस्टेड. S112 शारजा इंडस्ट्रियल पे आपको ट्रैफिक मिलेगा. एंड देन दैट एंटायर स्ट्रेच फ्रॉम हे बराशी ऑल द वे टू अल अवीर हेडिंग साउथ यू विल फाइंड 5-7 मिनट की देर एट 611.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
5: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ.
6: क्या बोल रहे है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं.
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood. Big 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae.

0: I can't even imagine what it would be like to spend 8 months in the International Space Station in space.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: अगर आपने ये खबर सुन ली है तो you know where I'm heading with this. Like a big day for all Indian origin people of Indian origin because the latest Anil Menon has successfully arrived at the International Space Station ISS pe on board a Russian rocket, Russian Soyuz MS-29. And do cosmonauts ke saath wahan par pahunche hain. I mean, cosmonaut astronaut is the same thing. It's just Russia mein cosmonaut, America. Kyunki America mein, isliye yeah, you get the drift. But 8 mahine kya karenge Mr. Menon on board the ISS? So here's what he's going to be doing. He's going to research the long-term effects, the long duration ye space flight se jo human body pe effects hote hain, wo uski research karne wale hain. AI assisted medical diagnostics out there, semiconductor manufacturing in microgravity. Yeah, this is rocket science. Look, kehte na this is not this is and technologies that could support future missions. Agar moon or Mars pe jana hai, then of course space station se guzarte hue jana padega. आपको यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर एंड व्हाट डज इतना सारा टाइम आप स्पेस पे स्पेंड करोगे तो बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा ये सब कुछ श्री श्री मेनन वहां पर स्टडी करने वाले हैं एंड हु इज दिस गाय ही हैज एन इंडियन फादर फ्रॉम केरला एंड यूक्रेनियन अमेरिकन मदर इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन है यूएस स्पेस फोर्स कर्नल फॉर्मर नासा फ्लाइट सर्जन एंड एक्स स्पेस एक्स मेडिकल लीड या ही इज नॉट ऑन लिंक्डइन धुरंधर द रिवेंज इसे कहते हैं धुरंधर सीवी भाई दिस सॉन्ग इज कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल कीप इट लॉक्ड दिस इज अ बिग 106.2 पे द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिद द शो इज ब्रॉट यू बाय जुलेखा हॉस्पिटल एंड आप जानते हैं हमारे शो के करता था जुलेखा हॉस्पिटल एंड यू नो व्हाट वी वांट थैंक आवर फ्रेंड्स एट जुलेखा हॉस्पिटल एवरी डे इन द मॉर्निंग फ्रॉम 7 to 11 नॉट 6 to 10 द शो इज ब्रॉट यू बाय जुलेखा फॉर क्लियर स्किन रिन्यूड कॉन्फिडेंस जुलेखा हॉस्पिटल ऑफर करता है एक्सपर्ट ट्रीटमेंट्स फॉर एक्ने पिगमेंटेशन हेयर लॉस एलर्जीज एंड सो मच मोर ग्लो नेचुरली विद अफोर्डेबल डर्मेटोलॉजी पैकेजेस डिजाइन टू कीप योर स्किन हेल्दी क्लियर रेडिएंट लुकिंग योर बेस्ट Start with feeling your best. Discover advanced aesthetic and plastic surgery and so much more. Facial refinement, body contouring, vagera. And it's all tailored for natural looking results, expert care, advanced techniques. Book your consultation with Zuleika Hospital today. 600-52-442. That's 600-52-442.
1: Big 106.2.

0: धुरंधर द रिवेंज से हम प्यार करने वाले कल सुबह एक बार फिर मिलेंगे विद एंटरटेनमेंट. बड़े प्राइजेस का पिटारा खुलने वाला है रोज सुबह फ्रॉम 7 to 11. बट राइट नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू यू.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: लेकिन जाते जाते एक जरूरी सूचना. यू गेट 4 इनक्रेडिबल डाइनिंग एक्सपीरियंसेस ऑल अंडर वन रूफ एट ताज दुबई, मिस्टेस ट्री हाउस, बॉम्बे ब्रासरी एंड द एलोक्वेंट एलिफेंट. सोक इन ब्रेथ टेकिंग दुबई स्काईलाइन व्यूज एंड वाइब्रेंट नाइट लाइफ. ट्री हाउस पे इंडल्ज इन बोल्ड एशियन फ्लेवर at Mistress and contemporary Indian cuisine at Bombay Brasserie. Catch up with the friends, enjoy your favorite beverages at the Eloquent Elephant. Don't miss the After Dark Brunch at Mistress every Saturday from 7 p.m. to 10:30 p.m. On that winning note, I'm going to be saying goodbye to you, but don't forget to follow us on socials. We are 106.2 Big FM on Instagram, 106.2 Big FM. वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा to keep you company all through the day. You can follow me on socials as well. I'm Sid Seth, SIDSETH. Till tomorrow morning sharp at 7. Enjoy the rest of your Wednesday. Bye bye.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड, बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग बाय ई एंड।

0: Big Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix with Zora, weekdays 1-5 PM only on Big 106.2, brought to you by insurancemarket.ae. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, miss kiya gaya?
4: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
5: I'm giving you the letter, letter J. J से बताओ Bollywood celebrity name, go. Come on, लास्ट सेकंड पे बता दिया। अब बताओ बॉलीवुड मूवी का नाम।
6: जवान।
5: जवान, हाँ, वेरी गुड। बताओ प्लेस।
6: जोधपुर।
5: वेरी गुड। अब बताओ थिंग।
6: जैकेट।
5: भाई साहब, तालियां। What a queen, आशिता। You proved it कि मैं सिर्फ बातें नहीं करती हूँ, मैं गेम खेलती हूँ जीतने के लिए।
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1-5 PM. The Big Mix with Zohra only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2 song of the hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
0: More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Girl, I still remember the first time I saw you. In your eyes I saw lights shining bright, and all at once I knew I was gonna love you.

0: अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
2: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
3: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड आफ्टरनून, 1:07 हो चुके हैं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It is a very, very hot day, यार आज 40 डिग्री बाहर, from 37 straight to 40 डिग्री सेल्सियस humidity, फिलहाल even though it's a little less comparatively 45% पे है, highs hopefully इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, lows expected है आज सिर्फ 34 के।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस हे मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: Listen to her every day.
8: Mugembo! Khush hua!
9: I've got a doctor who sings. Let's welcome Dr. Komal. Hi, good evening.
10: Hi, good evening, Mansi.
9: मुझे बात बताओ, क्या आप गाना गा के इलाज कर देते हो या दवाई वगैरह लिखते हो?

0: खुश हुआ।
1: I've got a doctor who sings. Let's welcome Dr. Komal. Hi, good evening.
2: Hi, good evening, Mansi.
1: मुझे एक बात बताओ, क्या आप गाना गा के इलाज कर देते हो या दवाई वगैरह लिखते हो?
2: क्या लगता है आपको?
1: आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आधे पेशेंट्स तो सिर्फ शायद आपसे बात करने ही आ जाते होंगे। So without further ado, let's hear Dr. Komal Ashram on the karaoke.

0: मजा आ गया. डॉक्टर कोमल, आई थिंक यूर इन द रॉन्ग प्रोफेशन.
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM to 9 PM. द बिग थ्रिल विद मानसी. ओनली ऑन बिग 106.2. द बीट ऑफ बॉलीवुड. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
0: ट्रैफिक का हाल फिलहाल E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर. अगर आप जा रहे हो शारजा की तरफ तो आपको मिलेगा थोड़ा सा लाइट ट्रैफिक. दिस इज अराउंड 2 hour 4. उसके अलावा आपको मिल जाएगा थोड़ा सा लाइट ट्रैफिक E44 अलखेल रोड. इफ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स D3, लाइट ट्रैफिक ऑल्सो रिपोर्टेड ऑन E11 इतिहाद स्ट्रीट हेडिंग टुवर्ड्स नाहदा 1. एक कार एक्सीडेंट हुआ है. इनफैक्ट अगर आप है अराउंड D91 कुद स्ट्रीट, दैट इज कॉजिंग अनदर 7 to 8 minutes का डिले. एनी अदर ट्रैफिक अपडेट यू कैन मैसेज अस ऑन आवर व्हाट्सएप व्हिच इज 054-309-1062.
1: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
2: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
3: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
1: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Roof Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: हाँ जी बिल्कुल सही. This is the Big Mix with me Zohra until 5. फिलहाल हम खेल रहे हैं The Big Bollywood Undercover. चार क्लूज मैंने आपको दिए थे. With me on the phone line right now is Nikhil. Hi Nikhil, how are you?
2: Hi, Zohra.
1: इतनी बार हाय बोल दिया. हाय हाय हेलो हाय. क्या कर रहे हो, इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो?
2: नहीं,
1: इंटिमिडेटिंग लग रही हूँ आपको? नहीं ना.
2: नहीं,
1: इतनी स्वीट सी तो आवाज है मेरी. ऐसे जब मैं इंसान आगे से बोल रहा होता है तो मतलब दैट्स अ क्यू फॉर यू टू कॉम्प्लीमेंट. आप कर ही नहीं रहे हो मतलब.
2: तो वैसे आपके लिए कॉम्प्लीमेंट और है मैम.
1: ओहो प्लीज गो अहेड.
2: जो मस्तला गाना है ना जो अभी नया रिलीज हुआ है.
1: हाँ जी.
2: उसका वो सिंगर का वॉइस और आपका वॉइस 101% मैच.
1: व्हाट आर यू सेइंग?
2: हाँ मैम, सीरियसली मैंने कितने बार सोचा कि फोन करूं पर टाइम नहीं मिला. अभी मैं सोचा कि आज मैं बोल ही दूं आपको.
1: अरे व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट यार निखिल. चलो गेम नहीं खेलते, आप ऐसी बातें करते रहो बस मेरे साथ. अच्छा निखिल, मैंने चार क्लूज दिए थे आपको. ये इंडियन एक्ट्रेस जो तेलुगु तमिल हिंदी फिल्म्स में काम कर चुकी हैं, इनका डेब्यू हुआ था इस म्यूजिक वीडियो में लफ्जों में कहना सकूं. इनकी डांसिंग स्किल्स टॉप नॉच है एंड इन्होंने रोल प्ले किया था वॉरियर प्रिंसेस अवंतिका का. कौन है ये जिनकी मैं बात कर रही हूँ?
2: तमन्ना भाटिया.
1: बिल्कुल सही. Are you a fan of Tamanna Bhatia? Because I absolutely love her.
2: नहीं, फैन तो नहीं बोल सकते पर अच्छी लगती है. पर आपने अवंतिका बोला ना तो मैंने गेस कर लिया कि वही होगा क्योंकि वो
1: अवंतिका का रोल उनका बहुत टॉप नॉच था.
2: आई
1: वुड हैव थॉट कि डांसिंग स्किल्स वुड गिव इट अवे क्योंकि उनके सारे डांस नंबर्स, ये जो गाने हैं इनके, इतने हिट गए रिसेंटली.
2: इतना बड़ा क्लू दे दिया कि वो इतने बड़े फ्रेंचाइजी में काम किया
1: है ना. है ना, बहुत ही बड़ा क्लू.
2: समझ गया कि अवंतिका अपना तमन्ना भाटिया होगा.
1: थोड़ा डिफिकल्ट करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था कि कंप्लीट द सॉन्ग फॉर मी. अच्छा कैन यू कंप्लीट द सॉन्ग फॉर मी? ठीक है,
2: कौन सा वाला?
1: ये सुनो. आज की रात मजा हो उसका. कंप्लीट करो.
2: आज की रात हुस्न का मजा लीजिए.
1: ये नहीं करना चाहिए था मुझे. आंसर देने के बाद चुपचाप फोन रख देना चाहिए था. But Nikhil, you're such a sport. It was lovely, lovely talking to you. And thank you for calling, yeah, Nikhil. Bye.
2: Thank you.
1: अरे इतनी तारीफ करके चले गए निखिल, मन कर रहा है बार बार इनको फोन करती रहूं. बट दैट इज द बिग अंडर कवर. बॉलीवुड अंडर कवर खेलते हैं हम, जहां पे क्लूज आपको देते हैं हम चार और आपको उन क्लूज को सुनकर बताना होता है किस सेलिब्रिटी की बात हो रही है. लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट स्टार. नेक्स्ट स्टार में व्हाट्स अप विद बॉलीवुड, व्हाट इज द टी, दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू बी स्पिलिंग फॉर यू वेरी सून.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: झुमका
1: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए GoChat कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: Lady Hair Color, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. This is Fan Network News from the BBC.
1: BBC News with David Harper. Australia has announced wide-ranging plans to regulate artificial intelligence. Measures would include enhanced copyright protections and restrictions on data centres' use of water and power. Meanwhile, New York has become the first US state to place a ban on the construction of large data centres. The governor said the facilities risked overwhelming the electricity grid. Argentina's vice president has stoked tension ahead of the World Cup semi-final with England by directly linking the match to the Falklands War of the 1980s. It contradicts the position of Argentina's coach, who says it's just a football match and should not be mixed up with sad events of the past. Vietnamese police are investigating an alleged international diamond smuggling network worth millions of dollars. They say the diamonds were being smuggled from India via Hong Kong. Dozens of people have been arrested. Security forces in Pakistan-administered Kashmir are trying to stop protesters marching on the main city of Muzaffarabad to demand more political representation. Thousands of security personnel have been deployed to prevent further violence after 10 people, including two police officers, were killed in clashes on Tuesday. And that's the latest BBC News.
0: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish. All in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour. Made in Italy. Big 106.2.
2: जब वो चले तो सब देखते रह जाए और जब वो रुके तो वक्त बचाए और वो जब हंसेगी उसके सामने झुक के अपनी बाहें फैला के कहूंगा आई लव यू.
0: When the clock strikes sass, she walks in. Fashion, films, and fun. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: बिल्कुल सही यार, 2:02 जोहरा के साथ ऑन द बिग मिक्स इस दूसरे घंटे में. ऑन व्हाट्स द बिग बॉलीवुड टी, हम उसकी बात करेंगे क्योंकि बिग बॉलीवुड टी तो बहुत सारी होती है. हर दिन बॉलीवुड में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, बट समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट व्हाट इज यू नो करंटली द हेडलाइन. समटाइम्स आई फील लाइक आई वॉन्ट टू पिक ऑन थिंग्स दैट नॉट मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट. एंड ऐसा ही एक क्लिप मैंने देखा इंस्टाग्राम पे अबाउट अ सिंगर. ही इज बेसिकली ही वॉज ऑन अ पॉडकास्ट एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट समथिंग, बट देर आर वेरी फ्यू सिंगर्स जो यू नो इन रियलिटी भी उतना ही अच्छा गा लेते हैं जितना अच्छा वो प्लेबैक सिंगिंग में साउंड करते हैं. क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग में तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट हाउ गुड यू साउंड व्हेन यू आर रॉ, दैट इज आई थिंक ट्रू टैलेंट. सो किस सिंगर की मैं बात कर रही हूँ आज, लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑन द बिग बॉलीवुड टी दिस आर. यू आर विद मी ज़ोहरा शाम 5 बजे तक.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, इट्स 2:06 ऑन द बिग क्लॉक।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Hanji, Zohra ke saath aap a very, very good afternoon. Keeping you company all the way until 5. Filhaal, hum baat kar rahe hain on the Big Bollywood Tea about a very, very popular singer, jinki, matlab main bahut badi fan rahi hoon because of his ability to sing any kind of song. He can literally sing any kind of song and he can make it seem so effortless. In fact, ek question bhi unse pucha gaya tha about the same, because industry mein aisa mana jata hai that he is the only singer who can take any pitch and make it seem like it's effortless without any constraints. A lot of industry people believe in that he can take any single pitch and it is only him who can achieve that. And us pe he had something very beautiful to say, and I think that shows his humble attitude as well.
3: Pitch jo hai, that cannot be the identification of a good singer.
4: जी
3: हाँ, अपील का होना बहुत ज़रूरी है कि बात कन्विंस करे. इतनी भी ऊंची इमारत बना के क्या फ़ायदा है कि वहाँ जाने को दिल ना करे. आपने सुना होगा, मैंने पूरी किताब पढ़ी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की,
4: राइट,
3: उनकी किताब का टाइटल है सबसे ऊंचा पहाड़ सबसे ज़्यादा सूना होता है, उदास होता है. तो इसलिए भी उदास होता है कि वो दूसरे पहाड़ों को अपने से छोटा समझता है. ये भी किसी ने इम्प्रोवाइज किया था.
4: क्या बात.
3: एक इनकम टैक्स अधिकारी है, सुधांशु झा, चीफ कमिश्नर है, उनका डिपार्टमेंट देखिए. तो उन्होंने भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की इस बात को बड़ा किया कि सबसे ऊँचा पहाड़ सबसे ज़्यादा अकेला होता है. तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी हो सकता कि अकेला इसलिए हो तो कि दूसरे पहाड़ों को छोटा समझता है.
2: I feel that is so beautiful to say. समथिंग दैट यू नो जिनकी मतलब इतनी तारीफ की है कि आप ही हो जो ये कर सकते हो, आप कोई भी पिच ले सकते हो, ये कर सकते हो. ही जस्ट फेल्ट लाइक सेइंग कि यार ऐसे बहुत होंगे जो आपको बोलेंगे कि आप ये कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता. बट दैट इज़ नॉट टेक्निकली जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट. ऑफकोर्स इट इज़ समथिंग गुड टू से अबाउट समवन, बट द फैक्ट दैट यू आर द बेस्ट एट समथिंग वुड ऑल्सो मीन दैट देर इज़ नोबडी एल्स विथ यू. अगर आप सबसे बड़े पहाड़ हो, सबसे ऊँची इमारत हो, तो आप सबसे ज़्यादा अकेले भी हो, सबसे ज़्यादा सूनापन भी आप ही को फील होगा. एंड आई थिंक दैट हिट मी रियली रियली हार्ड. बट This man has my respect, my love, everything because of the person he is, the views, the opinions he has, and also the artist he is. He's blessed us with the best of the best songs in the industry.

0: नमस्ते।
1: पहले आप वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं होंगे।
0: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा, आप बात बताइए।
1: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
0: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है देखिए।
0: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood. This summer, there are surprises all across Dubai, waiting to be discovered. More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&, go for more.
3: Namaste.
4: Hola.
3: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: 39 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी 50% पर पहुंच चुकी है। इट इज मोस्टली सनी बट थोड़ा सा क्लाउडी हो सकता है टू कॉम्पेंसेट फॉर द हाई टेम्परेचर्स। हाईज आज जाएंगे 40 तक, लोज जाएंगे आज सिर्फ 34 तक।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
9: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
10: दो या चार?
9: चार।
10: कब तक वापस लौटेगा?
9: यही 4-5 दिन में।
10: चार या
9: पाँच?
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
2: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
11: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: 2:34 हो चुके हैं जोहरा के साथ अपॉन द बिग मिक्स. फिलहाल यस डेफिनेटली आर पीपल ऑन द फ्लोर विल डेफिनेटली वांट टू कम एंड गेट सम मोर, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफर्स है, यहाँ पे जो जो आपको मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि फिलहाल आई एम गोइंग स्ट्रेट आफ्टर माय शो टू उमलकुएन मॉल ऑफ उमलकुएन जा रही हूँ मैं. 6 PM ऑनवर्ड्स वहाँ पे होने वाला है ग्रैंड लॉन्च ऑफ द ब्रांड न्यू बेबी शॉप स्टोर एंड देयर सो मच ओवर देयर टू एंजॉय. 25% ऑफ अक्रॉस द एंटायर स्टोर संडे तक, यानी कि 19 जुलाई तक. उसके अलावा इफ यू आर वन ऑफ द फर्स्ट 100 shoppers there, you get free gifts. उसके अलावा बच्चों को, families को इतनी सारी चीजें मिलेंगी यार. वहां पे face painting है, balloon bending है, वहां पे free popcorn dates, kawa, सब कुछ for your entertainment. साथ ही साथ you also get to, you know, be part of some amazing deals over there. So shop दिल खोल के एकदम वहां पे, and it's going to be super fun because I'm going to be there to personally say hi, hello to you, and you know, have a great time and celebrate साथ में. So 6 PM onwards, make sure to join Mall of Umalkuin. This is the grand launch of the brand new baby shop store.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: This football season, enjoy every single match live at the Huddle Bar Dubai, the Huddle Al Barsha and Brewhouse, the official fan zones of the World Cup. Expect special World Cup menus and happy hour deals with select beverages from 24 dirhams. If that doesn't make you scream,
3: goal!
2: They're broadcasting games past 3 a.m. For more information, follow at the Huddle UAE and at Brewhouse DXB on Instagram. Terms and conditions apply.
4: Drive home a brand new Jetter. Buy now, pay next year. Zero VAT or zero interest. With EMIs starting from just 966 dirhams per month.
1: Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
5: ट्रैफिक का हाल फिलहाल E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड शारजा की तरफ अगर आप जा रहे हैं वहां पे आपको मिल जाएगा वेरी वेरी हैवी ट्रैफिक। दिस इज स्टार्टिंग खवानीज गोइंग ऑल द वे अंटिल S102 शारजा रिंग रोड। 15 से 20 मिनट का वहां पर डिले, एक कार एक्सीडेंट हुआ है नाहदा 1 की तरफ जा रहे हो E11 लेकर। दिस इज अराउंड D95 कायरो स्ट्रीट पे आपको ये ट्रैफिक मिल जाएगा, हैवी ट्रैफिक। उसके अलावा लाइट ट्रैफिक DE3 रबात स्ट्रीट पे आपको मिल जाएगा फेस्टिवल सिटी के पास। एनी अदर ट्रैफिक अपडेट आप हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं 0543091062।
6: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. Big. Woo! Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, इट्स 3:07 ऑन द बिग क्लॉक।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: चंडीगढ़ में क्या घर दिला रहे हो यार, यहाँ पे जहाँ पे महंगाई बड़ी हुई है वहाँ घर दिला के दिखाओ, फिर मानेंगे प्यार आपका कितना सच्चा है।
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: इनका तो प्यार सिर्फ खुद ही के लिए सच्चा है, खुद ही से प्यार है और किसी चीज से प्यार नहीं है। That is according to a study, ठीक है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये study कह रहा है। Please don't come jumping at me. सुन लो बात पहले मेरी। On what's the big deal today? ये topic हम discuss कर रहे हैं। Selfies लेना हर किसी को पसंद है ना, सबको पसंद है अपने मतलब अच्छे अच्छे पिक्चरें लेना, बट ज्यादातर इट इज women like taking selfies a little more than men. I think we can all agree on that because aadat hoti hai. I think it's not something stereotypical that I want to say, it's just stating facts. If there are 10 women, you'll see at least 6 or 7 of them who would be fond of taking their pictures, but if you see 10 men, usme se there'll be only 3 or 4 who'll be like, oh, meri picture khich. There'll be very few of those. So according to this new study, it says that men who frequently post selfies of themselves, basically they are more likely to display psychopathic एंड नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स। मतलब अगर आप सेल्फी अपनी ज्यादा ज्यादा लेकर ज्यादा ज्यादा फ्रीक्वेंटली उसको पोस्ट करते हो, इट कुड मीन कि आप में वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हो। नाउ इट डज नॉट मीन कि यू आर अ नार्सिसिस्ट, बट इट कुड मीन दैट यू हैव दोज ट्रेट्स। इवन दो आई डोंट वॉन्ट टू लाइक यू नो स्ट्रेट अप से कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला, बट आई थिंक हाँ वो ट्रेट्स आ जाते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट मैन, आई वुड से कि इवन इन वेमेन वो थोड़ा बहुत आ ही जाता है, स्पेशली इफ यू सी वेमेन पोस्टिंग अ लॉट ऑफ देयर सेल्फीज, इट डज हैव नार्सिसिस्टिक traits. So I feel like this has nothing to do with gender. It's nothing to do with, oh, men only, you know, have this thinking or they think that way. I feel like it is regardless of the gender, men ho ya women ho, the people who are obsessed with, you know, themselves, with self-absorbed jo personalities hai, taking so many selfies and posting them, I feel like wo thoda sa trait aa hi jata hai. But do you agree with this? Do you think that men have a little more of this, you know, attribute than women? Let me know. You can DM us 106.2 Big FM pe or even call me 800-1062 pe.
2: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
3: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
4: This summer, there are surprises all across Dubai, waiting to be discovered. More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&, go for more.
1: The Big Mix, brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247.
5: Namaste.
6: Hola.
5: Assalamualaikum.
7: Bonjour.
8: Ni hao.
9: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
1: Listen to her every day.
10: Mugembo! Khush hua!
11: I've got a doctor who sings. Let's welcome Dr. Komal. Hi, good evening.
12: Hi, good evening, Mansi.
11: मुझे एक बात बताओ, क्या आप गाना गा के इलाज कर देते हो या दवाई वगैरह लिखते हो?
12: क्या लगता है आपको?
11: आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आधे पेशेंट्स तो सिर्फ शायद आपसे बात करने ही आ जाते होंगे। So without further ado, let's hear Dr. Komal Ashram on the karaoke.
1: Karaoke.

0: मजा आ गया. डॉक्टर कोमल, आई थिंक यूर इन द रॉन्ग प्रोफेशन.
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM टू 9 PM. द बिग थ्रिल विद मानसी. ओनली ऑन बिग 106.2. द बीट ऑफ बॉलीवुड.
2: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो.
3: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
1: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2. द बीट ऑफ बॉलीवुड.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली.
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
0: It's 40 degrees Celsius outside. Humidity 50% पर पहुंच चुकी है. Highs इससे ज्यादा नहीं जाएंगे. Lows आज शाम जाएंगे 34 तक. Good afternoon, you're with me Zohra on the Big Mix.
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Big 106.2

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

गली तो आपको आना है, लेकिन भूल के नहीं, याद से बिल्कुल आना है इस गली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप ही का फायदा है यार. एंड आई एम गोइंग टू बी देयर, एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड, क्योंकि आज शो के बाद मैं डायरेक्ट जा रही हूँ उमल कुएन. यार मॉल ऑफ उमल कुएन में ग्रैंड लॉन्च हो रहा है बेबी शॉप के ब्रांड न्यू स्टोर का, एंड देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन ओवर देयर. तो आई एम गोइंग टू मेक श्योर यू एंजॉय दैट. मैं पर्सनली वहां पे होने वाली हूँ आपका ख्याल रखने के लिए. इनफैक्ट वहां पे फर्स्ट 100 शॉपर्स को फ्री गिफ्ट्स मिलेंगे. उसके अलावा यू गेट टू एंजॉय 25% ऑफ अक्रॉस द एंटायर स्टोर टिल संडे, दैट्स 19th जुलाई. उसके अलावा बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए यार बलून बेंडिंग, फेस पेंटिंग फ्री, पॉपकॉर्न, डेट्स, कावा, सब कुछ मिल जाएगा आपको वहां पे. एंड सम अमेजिंग डील्स आल्सो दैट यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन. सो मेक श्योर यू जॉइन अस 6 p.m.

0: खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 4:05 हो चुके हैं। गुड आफ्टरनून।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Jill.
2: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Missed your morning buzz? ये सुनो,
3: आज की बर्थडे फिल्म है, यानी कि 15 साल पहले आज ही के दिन एग्जैक्टली डॉट रिलीज हुई थी। तीन दोस्त एक ट्रिप पे निकले जिसने पूरी कंट्री का टूरिज्म बजट रेवेन्यू 81% से इंक्रीज कर दिया था। व्हाट फिल्म एम आई टॉकिंग अबाउट?
4: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
3: एब्सोल्युटली करेक्ट।
4: अगस्त में मैं भी स्पेन जाऊँ इसी के लिए।
3: अरे बाप रे बाप, टेल मी मोर भाई, क्यों?
4: क्योंकि मेरे फ्रेंड जर्मनी में है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि जो इवेंट आ रहा है ना अभी स्पेन में,
3: टोमेटिना फेस्टिवल, लेट मी गेस।
4: जी एग्जैक्टली,
3: वो टमाटर मार। वेरी गुड यार, वेरी गुड।
4: हो सकता है जाने का, हमारा हम लोग का प्लान बन रहा है यहाँ से।
3: मतलब आपकी शादी वादी हो गई या क्या सीन है?
4: नहीं नहीं, अभी सिंगल ही सर।
3: हाँ,
4: शादी होती तो कहाँ मिलता जाने को।
3: नहीं नहीं, हो सकता है उसमें भी आप फिर। हाँ, उसमें और पापड़ बेलने पड़ते, उसमें आई एम श्योर देयर वुड हैव बीन मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी। अभी आप मतलब अकेले हो?
4: जी एक्चुअली मेरा फ्रेंड साथ में जा रहा है, उसकी वाइफ ने बोल दिया अगर तुम जाओगे तो मुझे साथ में लेके जाना है, वरना मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी।
3: तो फिर फ्रेंड, लेट मी गेस, तो फ्रेंड आ ही नहीं रहा।
4: वो आ रहा है लेकिन वो बोल रहा है मैं कुछ और प्लानिंग करूंगा कंपनी से रिलेटेड।
3: भाई इस कहानी का पार्ट टू क्या होता है प्लीज मुझे बताना, प्लीज। I am very curious.
1: Energy and action. Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
7: 40 degrees Celsius outside, humidity filhal hai 50% pe, highs are expected to not go any higher than 40 and lows will drop down to about 34 later tonight.
1: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Midnight Mix with Zohra on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: बिल्कुल सही यार, जोहरा के साथ हो right here on Big 106.2. This is the beat of Bollywood. फिलहाल हम खेल रहे हैं मेरा सबसे favorite game.
2: Are you ready for this?
0: Name, place, movie, thing.
1: Yeah. Yes, that's right. We're playing Name, Place, Movie, Thing. With me on the phone line to play today is Amreen. Hi, Amreen. क्या हाल है?
3: I'm fine, thank you. आप कैसे हो?
1: मैं ठीक हूँ. अमरीन, क्या करते हो आप?
3: आई एम अ हाउसवाइफ.
1: बॉलीवुड में मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप बहुत प्रो हो. प्रो हो क्या आप बॉलीवुड में?
3: हाँ हूँ, आई विल ट्राई.
1: यू विल ट्राई. चलो लेट्स स्टार्ट विद एन इजी राउंड फॉर यू. एक बार इजी राउंड से थोड़ा वार्म अप हो जाए, फिर थोड़ा डिफिकल्ट राउंड खेलेंगे, ठीक है?
3: यस.
1: चलो इजी राउंड में मैं पहले आपको लेटर दे रही हूँ. लेटर एफ, ठीक है? F से, हाँ F से आपको बताना है बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम. स्टार्ट.
3: फारूक शेख.
1: वेरी गुड. F से फारूक शेख ही, कौन से एक्टर? हाँ हाँ, अच्छा पुराने वाले एक्टर, ठीक है ओके. F से बताना है बॉलीवुड मूवी का नाम. गो.
3: पन्ना.
1: वेरी गुड. F से बताना है प्लेस. लेट्स गो.
3: फ्रांस.
1: अभी F से आपको बताना है थिंग.
3: पैन.
1: देखो शाबाश, मतलब इतना इजी, बहुत इजी है ना ये तो.
3: बहुत बहुत.
1: चलो अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेटर आपको दूंगी.
3: ओके
1: ओके. अभी मैं आपको लेटर दे रही हूँ. लेटर ओ. ओ से आपको बताना है बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम. गो.
3: ओमपुरी.
1: शाबाश. अभी ओ से बताओ मूवी.
3: ओमकारा.
1: हां जी. ओ से बताओ प्लेस.
3: ऊटी.
1: अभी ओ से बताओ थिंग.
3: ओच. ओच
1: है? नहीं, ये तो खाने वाली चीज होती है. नॉन लिविंग एक कोई थिंग चाहिए. अरे यार, मतलब आप एक काम करो, आप इधर आ जाओ स्टूडियो में, आप गेम खेल लो रोज. बहुत मजा. अरे अमरीन, बहुत मजा है आपके साथ खेल के. ऑनेस्टली जब आपने हेलो कहा मुझे लगा अरे आप नर्वस हो गए, लेकिन जैसे आपने गेम खेला है
3: मैं रेडी हो रही थी.
1: दिस वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म. Super, super fun talking to you, Amreen. I hope you enjoy.
3: Same here. Yes, I enjoyed a lot.
1: Have
3: Thank
1: a great day, Amreen. Bye.
3: See you.
1: Bye. इतनी क्यूट यार अमरीन, मजा आ गया बात करके उनसे. बट दिस इज नेम प्लेस मूवी थिंग, अ वेरी सिंपल बॉलीवुड वर्जन ऑफ नेम प्लेस एनिमल थिंग. अगर आप भी खेलना चाहते हो, ऑल यू गॉट टू डू इज कॉल मी ऑन आवर टोल फ्री नंबर, दैट्स 800-1062.

0: it! Hot it up with big tickets!
1: I guarantee 20 million dirham grand prize!
0: 500,000 dirham winners! And 1 million dirham big spin game!
1: Buy now at bigticket.ae.
2: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
3: Missed your morning buzz?
4: उठा ले रे बाबा।
3: ये सुनो,
5: आज की बर्थडे फिल्म है, यानी कि 15 साल पहले आज ही के दिन एग्जैक्टली डॉट रिलीज हुई थी। तीन दोस्त एक ट्रिप पे निकले जिसने पूरे कंट्री का टूरिज्म बजट रेवेन्यू 81% से इंक्रीज कर दिया था। व्हाट फिल्म एम आई टॉकिंग अबाउट?
6: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
5: एब्सोल्युटली करेक्ट।
6: अगस्त में मैं भी स्पेन जाऊं इसी के लिए।
5: अरे बाप रे बाप, टेल मी मोर भाई, क्यों?
6: क्योंकि मेरे फ्रेंड जर्मनी में है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि जो इवेंट आ रहा है ना अभी स्पेन में,
5: टोमेटीना फेस्टिवल, लेट मी गेस।
6: जी एग्जैक्टली,
5: वो टमाटर मार। वेरी गुड यार, वेरी गुड।
6: हो सकता है जाने का, हमारा हम लोग का प्लान बन रहा है यहाँ से।
5: मतलब आपकी शादी वादी हो गई या क्या सीन है?
6: नहीं, अभी सिंगल ही सर।
5: हाँ,
6: शादी होती तो कहाँ मिलता जाने को।
5: नहीं, हो सकता है उसमें भी आप फिर जा। हाँ, उसमें और पापड़ बेलने पड़ते, उसमें आई एम श्योर देयर वुड हैव बीन मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी। अभी आप मतलब अकेले हो?
6: एक्चुअली मेरा फ्रेंड साथ में जा रहा है, उसकी वाइफ ने बोल दिया अगर तुम जाओगे तो मुझे साथ में लेके जाना है, वरना मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी।
5: तो फिर फ्रेंड, लेट मी गेस, तो फ्रेंड आ ही नहीं रहा।
6: वो आ रहा है लेकिन वो बोल रहा है मैं कुछ और प्लानिंग करूंगा कंपनी से रिलेटेड।
5: भाई, इस कहानी का पार्ट टू क्या होता है प्लीज मुझे बताना, प्लीज। I am very curious.
3: Energy and action. Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
7: ट्रैफिक का हाल फिलहाल, E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, बहुत ज्यादा ट्रैफिक अभी से। दिस इज स्टार्टिंग वर्का 1 ऑल द वे एंटिल S112। आपको मिल जाएगा हैवी ट्रैफिक यहाँ पे, एटलीस्ट इन 18 टू 20 मिनट डिले एक्सपेक्टेड ऑन द रोड। उसके अलावा द यूजुअल ट्रैफिक E44 अलखेल रोड हेडिंग टुवर्ड्स बिजनेस बे, आपको D3 जंक्शन के पास मिलेगा ट्रैफिक, अबाउट 9 मिनट डिले ऑन दैट रोड। साथ ही साथ थोड़ा सा ट्रैफिक अगर आप D85 बनिया स्ट्रीट पर है, ऑल्सो D89 एयरपोर्ट रोड पर अगर आप है, वहां पे भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है 6 से 7 मिनट के लिए। एनी अदर ट्रैफिक अपडेट आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 0543091062।
3: Sia, Self Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. This is the Big Thrill. Wednesday aate aate na mood acha hone lagta hai kyunki weekend yahi baju mein hai. Filhal weekend se bhi acha plan hai puri family ke saath absolutely free staycation ka. Big summer surprises it is. Agar aapne abhi tak register nahi kiya hai, do it right away. BSS अपना नाम लिख के सिर्फ एक WhatsApp करना है, ये भी फ्री है. 0543091062 पे. All set to keep you company until 9. We've got fantastic music. You've got fantastic company. That's me. To start with, every single evening, 5 से 6, हम गाते हैं, माहौल बनाते हैं, ट्रैफिक जाम में जाम करते हैं विद द karaoke. अगर आपके अंदर कभी कुमार सानू, अलका याग्निक बाहर आने के लिए बेकरार है, तो बाथरूम से ऑडियंस तक का सफर यहाँ पे होगा. I'll give you all the details. फिलहाल kick starting the show with
2: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग द टाइम राइट नाउ 5:06।
2: Bollywood.

0: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, this is the Big Thrill, Mansi. मैं कहती हूँ दिन कैसा भी हो, शाम होती होती माहौल बनाना जरूरी है. नहीं, वो वाला माहौल आप अपने घर जाके बनाना. यहाँ पे हम गाने गाते हैं विद ऑफ कोर्स द कैरियोकी. अब हम देसीज में एक चीज कॉमन है, वी लव लव टॉकिंग अबाउट फूड एंड विद फूड वी लव सिंगिंग एज वेल. अब गाना आए या ना आए, गाना चाहिए. हम सबके अंदर एक सिंगर छुपा हुआ है, उसी टैलेंट को बाहर निकालने का मौका मैं आपको देती हूँ एवरी सिंगल इवनिंग हियर. टैलेंट आपका, ऑडियंस मेरी. व्हाइल यू आर इन द ट्रैफिक जैम, वी जैम
1: कैरियोकी.
2: आज जो गाना है, जो ट्रैक है, मतलब इसको बिगाड़ोगे तो गाड़ी में बैठे बैठे जो लोग हैं वो काफी बीप बीप बीप करेंगे, क्योंकि ये क्लासिक गाना है. बट ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं यहाँ पे जो कमाल गाते हैं. सो इफ यू डोंट इवन सिंग कमाल, अगर आपका सुर लगता ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम फिर भी आपको ऑडियंस देंगे. आज शाम आपका ट्रैक है

लता जी की आवाज है, मदन मोहन साहब का म्यूजिक है, क्लासिक गाना है, मतलब हर सिंगर जो है वो ये गाना 100% गाता है। अगर आपने ट्रैक पहचान लिया है देन 800-1062 इज द नंबर टू डायल। आई एम लुकिंग फॉर माय कैरियोके किंग और क्वीन। लाइक आई से, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। गिव मी अ कॉल व्हाइल यू आर एट इट। वी हैव गॉट पिटबुल विद दिलजीत। तू मेरे

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस हे मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ओए होए, शाम की कॉफी का काम करता है ये गाना। व्हाट एनर्जी, व्हाट अ ट्रैक।
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: गुड इवनिंग, ये है बिग थ्रिल मानसी एंड ऑफ कोर्स वी डूइंग द कारियोकी। वैसे अगर आप कार में इस वक्त, तो गाड़ी घुमाओ सीधा उमल क्वीन पहुंचो, बिकॉज टुडे इज द डे बेबी शॉप इज ऑफिशियली ओपनिंग इट्स ब्रांड न्यू स्टोर एट मॉल ऑफ उमल क्वीन एंड 6 बजे से बहुत मस्ती होने वाली है। यू कैन हेड ओवर विद योर एंटायर फैमिली, एंजॉय एन एक्सक्लूसिव 25% ऑफ अक्रॉस द स्टोर एंड फर्स्ट 100 शॉपर्स को फ्री गिफ्ट भी मिलेगा। प्लस दिस फेस पेंटिंग, बलून बेंडिंग, फ्री पॉपकॉर्न, डेट्स एंड कावा फॉर एवरीवन टू एंजॉय। द बेस्ट पार्ट इज यू हैव अ चांस टू मीट ज़ारा देयर, शी इज गोइंग टू बी देयर। बहुत मस्ती होगी एंड बहुत सारी जो है चीजें वहां पे आप देख सकते हैं फॉर योर किड्स एंड इट्स अ ब्रांड न्यू स्टोर, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन। सो मेक श्योर दैट आप गाड़ी घुमा के सीधा उमल क्वीन पहुंच जाओ एंड ज़ारा विल सी यू देयर एट बेबी शॉप द ब्रांड न्यू स्टोर। व्हाइल यू In the car, we are doing the karaoke and very disappointed. जितने भी लोगों ने मुझे अभी तक बताया है, गलत ही जवाब बताया है, कोई ये ट्रैक ही नहीं पहचान पा रहा। It's such a classic. मतलब हर रियलिटी शो में एक आध बारी तो कंटेस्टेंट ये गाना गा देते हैं। लता जी की आवाज है, मूवी का नाम था वो कौन थी। अब इससे ज्यादा हिंट्स नहीं दे सकते। अगर आपने ट्रैक गेस कर लिया है एंड आप गुनगुना सकते हैं, देन 800-1062 इज द नंबर टू डायल। वी डूइंग द कारियोकी राइट हियर ऑन बिग 106.2 कीपिंग यू कंपनी अंटिल 9। आई एम मानसी।
1: कारियोकी 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: 40. मैं ना गाना गा रही थी साथ में कह रही हूँ okay, तो थोड़ा सा सुर लगा रही हूँ. फिलहाल इट्स 5:40, कीपिंग यू कंपनी अंटिल 9. आई एम मानसी, दिस इज द बिग थ्रिल. एंड व्हाइल वी आर सिंगिंग एंड एंटरटेनिंग ईच अदर, गिविंग यू अ चांस टू विन अ फैमिली स्टेकेशन, इट्स टाइम फॉर द बिग समर सरप्राइजेस. अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, डू इट राइट अवे. BSS अपना नाम लिख के भेजना है 0543091062. Coming up, break your spot. In fact, अगर नंबर यहाँ नहीं लगता है, you can head to our Instagram page. वहाँ से direct entry मिलेगी for the big summer surprises. 106.2 Big FM. It is. इसी के साथ we've got Diljit Dosanjh with my favorite.
1: हीरे कुफर करे, आँख ना खड़े, body संग मर मर पहुँच तो परे, कादा कटे वैर करे.
0: Right on Big 106.2, keeping you company. मैं हूँ Mansi. This is the Big Thrill. Good evening.
2: Big 106.2. Yeah!

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है?
1: क्यूरी, तेरे बाप का माल है?
2: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
3: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: All right, this is the Big Thrill and we're doing karaoke. Traffic में बैठे-बैठे क्या करें? Jam करते हैं. आपका talent, concert, मेरा audience, मैं आपको देती हूँ. And आज का track मुझे लगा था लोग यूं पहचान लेंगे, but बहुत सारे गलत जवाब आए. And the first one to give me the right answer is Mr. Nadeem. Good evening.
2: Hey, ma'am, how are you?
1: I am good, sir. आप कैसे हो?
2: Fine. How are you?
1: I am good, fantastic. आज मैं बहुत सुंदर भी लग रही हूँ. आप Instagram पे देख सकते हो.
2: उसके लिए तो वीडियो कॉल करना पड़ेगा ना, लेकिन जो कि मैं ऑब्वियसली कर नहीं सकता.
1: नहीं, वीडियो कॉल करने की जरूरत नहीं नदीम, मतलब मैंने तो उंगली पकड़ाई, आप हाथ पकड़ रहे हो. इंस्टाग्राम पे जाके देख लो, फिलहाल 106.2 बिग एफएम, दैट्स आवर इंस्टा हैंडल.
2: एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम चलाता नहीं हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम इज नॉट माय.
1: देखो अगर बंदा करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो आप डाउनलोड करके अगर मुझे देखना चाह रहे हो तो देख सकते हो. फिलहाल आप करते क्या है नदीम?
2: मैं एक इंजीनियर हूँ. मैं इंजीनियर.
1: वेरी वेरी नाइस. इंजीनियर्स आर द बेस्ट यू नो व्हेन इट कम्स टू चार्मिंग वुमेन. आप लोग बड़ी अच्छे से तारीफ करते हो लड़कियों की. सही बात बोली ना मैंने?
2: थैंक यू.
1: फिलहाल नदीम गाना वाना गाते हैं नहीं गाते हैं?
2: थोड़ा सा गा लेते हैं.
1: कभी ऐसा हुआ है कि आपने गाना गाया लोग जो है वो भाग गए हैं?
2: नहीं ऐसा नहीं हुआ है, वैसे तारीफ ही सुनी है.
1: तारीफ सुनी है? ओहो, अब तो माहौल बनेगा. मतलब एक्सपेक्टेशंस मेरे बहुत हाई हो चुके हैं. बंदा जो लड़कियों की तारीफ करे साथ में गाना गाए. चलो जी, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, नदीम की आवाज में सुनते हैं ये गाना जो बहुत सारे लोग पहचान ही नहीं पाए.
0: Karaoke.
2: ये दिल तुम बिन कभी लगता नहीं, हम क्या करें.
1: हाय हाय.
2: तसव्वुर

0: अब तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं ही वीडियो कॉल कर लूं यार। नदीम इतना अच्छा गाते हैं आप, बहुत बढ़िया। गाना वैसे आपने गलत, आपने भी पहचाना, गाना था लग जा गले, बट आपने ये गाना भी इतना अच्छा गाया है कि मेरा दिल ही नहीं करा कि मैं आपको रोकूं, इतना खूबसूरत। एंड एक्चुअली सिमिलर ट्यून्स हैं तो वो कैरियोकी ट्रैक भी सही बैठ गया, पर नदीम यार कमाल है।
1: कोई बात नहीं मैम, एक्चुअली आई कैन सिंग दिस सॉन्ग आल्सो फॉर यू,
0: फॉर मी। दो लाइन गा दो फिर लग जा गले की भी।

0: शायद तेरे सजन में मुलाकात हो न हो।
1: यार नदी मेरा फेवरेट गाना है, क्या कर रहे हो? सिंगल हो आप? लेट हो गई मैं, इतना अच्छा गाने वाला नदी मुझे मिलता तो अच्छा रहता।
2: बट मेरी वाइफ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
1: यार क्यों नहीं पसंद है? मेरा बंदा गाना गाए तो मैं बस बोलूं, बस मैं बैठूं और तुम गाओ मेरी आंखों में देखकर, आई थिंक उससे रोमांटिक कुछ नहीं हो सकता। आपने भी तो नदीम इंतजार नहीं किया ना, आप भी बस रफ्तारी पकड़ के निकल गए, बट आपने बहुत अच्छा गाया, मजा आ गया।
2: थैंक यू मैम, मैंने पहली बार कॉल किया था, पहली बार मैं जस्ट ऑफिस से निकला ही था।
1: छा गए हो, मैं कह रही हूँ, मतलब इससे अच्छा इस पूरे हफ्ते किसी ने नहीं गाया है। यू हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू मैम,
1: बाय बाय। वेल यही करते हैं हम एवरी सिंगल इवनिंग, गिविंग यू अ चांस, अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर टैलेंट। मतलब अगर आप इतना अच्छा नहीं भी गाते हैं, गाना चाहिए, इट इज द कैरियोकी। अगर आप भी कैरियोकी करना चाहते हैं 0543091062 पे मुझे मैसेज कर सकते।
3: Karaoke. It's hot it up with big tickets.
4: I guarantee 20 million dirham grand prize.
3: 500,000 dirham winners and 1 million dirham big spin game.
4: Buy now at bigticket.ie.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
6: Wow, your hair color looks stunning.
7: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
6: Yeah, right.
7: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia free and enriched with henna extract and argan oil.
6: Really?
7: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
6: I'm buying it right now.
7: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
8: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. Big 106.2. That's My Song by E. And.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill with Mansi. This is the show. We play this fun game. It's called the 5-second rule. Aapko milte hain 5 second. Main aapko deti hu kuch categories. Teen cheeze batani hoti hai 5 second ke andar. Haan, mujhe pata hai. Sounds very, very easy. But jitno ne khela hai, unhone yahi kaha hai ki itna aasan nahi hai. Like, it sounds easy, but खेलना इतना आसान है नहीं. तो अगर आप खेलना चाहते हैं, 800-1062 is the number to dial. And there's a new research today that I came across that says 87% of men forget their friends the moment they get a girlfriend. जैसे उनकी जिंदगी में लड़की आती है, अपने दोस्तों को भूल जाते हैं. अब ये शादी वाली बात नहीं है, ये गर्लफ्रेंड वाली बात है, क्योंकि शादी होते ही वो सारे दोस्त याद आ जाते हैं. But I want to ask men, आपकी जिंदगी में जब आपकी पहली गर्लफ्रेंड आई थी, क्या दोस्तों को भूल गए थे? मुझे बताओ. फिलहाल किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, टाइम राइट नाउ 6:05।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Hanji, yeah, Big Thrill. I'm Mansi. We're playing the 5-second rule. Joining us is Tafel. Good evening.
3: Good evening. How are you?
2: I'm good. How are you?
3: All good, all good. Heading back home now.
2: Kaisa raha aapka aaj ka din?
3: Okay. Can't complain.
2: Yeah, I mean, being grateful is the best thing that we can do. But Tafel, mujhe aapse ek important sawal puchna hai. Ek research maine abhi bhi padhi ke 87% of men apne doston ko bhool jaye jab zindagi mein koi ladki aati hai, girlfriend aati hai. To kya ye sach hai?
3: I must say not 87, 99%.
2: To jab aapki girlfriend aayi thi to aap doston ko bhool gaye the?
3: I straight away got married actually. So I didn't get that luck.
2: So you never got a chance to forget friends, right? क्योंकि शादी के बाद तो दोस्त ही याद आते हैं. But आपके किसी दोस्त ने ऐसा किया आपके साथ कि जैसे ही लड़की आई आपको भूल गए?
3: नहीं. Actually क्या हुआ ना कि you know born and brought up in Mumbai, being here in Dubai for 16 years. अब ऐसा हुआ कि लगभग सारे दोस्त आगे पीछे हो गए, तो hardly किसी से कोई touch कर पाते.
2: But school college में होगा ना कोई दोस्त जैसे ही girlfriend बनी तुम कौन मैं कौन खामा खां types?
3: अरे नहीं, जो थे आज भी close है. बट हाँ, बातें बहुत बहुत टाइम हो जाता है, बिकॉज़ नाउ एवरीवन इज अराउंड द वर्ल्ड. कोई किस टाइम है. बट यस, वी आर इन टच.
2: बट ये रिसर्च तो भाई उसके नीचे इतने सारे कमेंट है, 2000 कमेंट, और लड़के जो अपने दोस्तों को बहुत सारी ऐसी बातें कह रहे हैं जो मैं यहाँ बोल नहीं सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं तो सच होगा ही कि लड़की आते ही लड़के अपने दोस्तों को भूल जाते हैं.
3: आई एम टेलिंग यू, नंबर्स गलत है, 99% होना
2: चाहिए. फिलहाल वी प्ले द 5-second रूल. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 seconds. आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज. तीन चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर.
1: 5-second rule.
4: Oh yeah.
2: Quickly name तीन अक्षय कुमार की movies.
3: खिलाड़ी
2: and खिलाड़ी 420. Very nice. Three things that are green in color and खाई जाती हैं.
3: भिंडी और मटर.
2: और टाइम खत्म. भिंडी मटर. तीन रेड फ्लैग्स फॉर यू इन फ्रेंडशिप.
3: झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना,
2: अच्छा
3: पैसे मांगना.
2: ये देखो, झूठ नहीं बोलना और झूठ बोलना, पैसे मांगना, आई 200% अग्री. इससे बड़ा रेड फ्लैग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप ना मना कर सकते हो ना वापस मांग सकते हो, राइट?
3: और नहीं, सारी चीजें झूठ भी नहीं बोल सकते, सारी चीजें सच भी नहीं.
2: ये बात भी सही है. तीन ऐसी चीजें जो बीवी से छुपाते हो आप. अरे फंसा. ये तो मत कहना कि मैं कुछ नहीं छुपाता.
3: नहीं, काफी चीजें होती हैं जो कि ना पता हो तो ज्यादा बेहतर.
2: ज्यादा बेहतर है. फिलहाल तीन मेकअप आइटम्स.
3: परफ्यूम
2: इज नॉट मेकअप.
3: बॉडी को.
2: हाउ इज दिस मेकअप? यू आर मैरिड, हाउ मेनी इयर्स इट हैज बीन फॉर यू?
3: 14 इयर्स.
2: तो 14 साल में आपको पता नहीं है कि मेकअप क्या होता है? परफ्यूम, बॉडी वॉश, मेकअप नहीं होता है.
3: मुझे लगा फॉर अ मैन.
2: आदमी कौन सा मेकअप लगा रहे हैं यार? आई मीन आई हैव नो प्रॉब्लम्स, बट ईच टू इट्स ओन.
3: ग्रूमिंग.
2: नो, मेकअप इज वेरी डिफरेंट सर फ्रॉम ग्रूमिंग. एंड आपने बहुत ही खराब खेला था फिल्म. मुझे ऐसा लगा था आप फटाफट खेलोगे. अक्षय कुमार वाला तो आपने बैंग ऑन टाइम पे जवाब दिया, उसके बाद जो आप अटके हो फिर भारी नहीं निकले हो. बट थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड द गेम.
3: Yes, very much.
2: Have a great evening. Safe drive back home. Bye.
3: Bye.
2: Yeah, 5-second rule. जैसा मैंने कहा, लगता आसान है, नहीं, आपने ट्राई करना. 800-1062 is the number to dial.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
3: Namaste.
4: Hola.
3: Assalamualaikum.
5: Bonjour.
6: Ni hao.
5: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy, through the My Alfred app. InsuranceMarket.ae.
8: Missed your morning buzz?
9: Yes
8: or no?
10: आज की बर्थडे फिल्म है, यानी कि 15 साल पहले आज ही के दिन एग्जैक्टली डॉट रिलीज हुई थी। तीन दोस्त एक ट्रिप पे निकले जिसने पूरे कंट्री का टूरिज्म बजट रेवेन्यू 81% से इंक्रीज कर दिया था। व्हाट फिल्म एम आई टॉकिंग अबाउट?
11: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
10: एब्सोल्युटली करेक्ट।
11: अगस्त में मैं भी स्पेन जाऊं इसी के लिए।
10: अरे बाप रे बाप, टेल मी मोर भाई, क्यों?
11: क्योंकि मेरे फ्रेंड जर्मनी में है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि जो इवेंट आ रहा है ना अभी स्पेन में,
10: टोमेटीना फेस्टिवल, लेट मी गेस।
11: जी एग्जैक्टली,
10: वो टमाटर मार। वेरी गुड यार, वेरी गुड।
11: हो सकता है जाने का हमारा, हम लोग का प्लान बन रहा है यहाँ से।
10: मतलब आपकी शादी वादी हो गई या क्या सीन है?
11: नहीं नहीं, अभी सिंगल ही सर।
10: हाँ,
11: शादी होती तो कहाँ मिलता जाने को।
10: नहीं नहीं, हो सकता है उसमें भी आप फिर जा। हाँ, उसमें और पापड़ बेलने पड़ते, उसमें आई एम श्योर देयर वुड हैव बीन मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी। अभी आप मतलब अकेले हो तो फिर
11: जी। एक्चुअली मेरा फ्रेंड साथ में जा रहा है, उसकी वाइफ ने बोल दिया अगर तुम जाओगे तो मुझे साथ में लेके जाना है, वरना मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी।
10: तो फिर फ्रेंड, लेट मी गेस, तो फ्रेंड आ ही नहीं रहा।
11: वो आ रहा है लेकिन वो बोल रहा है मैं कुछ और प्लानिंग करूंगा कंपनी से रिलेटेड।
10: भाई इस कहानी का पार्ट टू क्या होता है प्लीज मुझे बताना, प्लीज। आई एम वेरी क्यूरियस।
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
12: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
13: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
14: 39 स्टिल लो जाएगा अराउंड 34, ह्यूमिडिटी फिलहाल 49% पर।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरीन।

0: फिलहाल 49% पर।
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
2: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हां जी, वी प्लेइंग द 5 सेकंड रूल. यह है बिग थ्रिल. मैं हूं मानसी. आ गए हैं सुभाष. गुड इवनिंग.
2: हेलो.
1: अरे वाह, बड़ी एनर्जी में आज. सर हुआ क्या है?
2: I'm just driving back home from office. I had a long day.
1: So the happiness of going back home too?
2: Yeah, definitely. My kid, my wife.
1: How sweet, how sweet. Filhal, Subhash, I want to ask you this question. I came across this research that says कि 87% men जैसे ही उनकी girlfriend बनती है वो अपने दोस्तों को भूल जाते हैं. तो आपने ये किया है जब कॉलेज के टाइम पे कोई girlfriend बनी तो दोस्तों को भूल गए?
2: परसेंटेज कितना सही है कितना गलत है पता नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया है. मैंने एक्चुअली मैं नहीं छोड़ा था, लेकिन लोग मुझे बोलने लग गए थे कि मैं छोड़ दिया. मतलब जगह कैसी बदलेगी मुझे समझ में नहीं आती है ये चीज. मतलब गर्लफ्रेंड मिलने से कोई फ्रेंड को कैसे छोड़ सकता है?
1: फ्रेंड को टाइम नहीं देते हैं लड़के. जैसे ही गर्लफ्रेंड आती है सारा टाइम गर्लफ्रेंड को देते हैं, फ्रेंड्स को टाइम नहीं देते हैं.
2: टाइम नहीं देने का मतलब तो ये नहीं है कि हमने छोड़ दिया.
1: तो ये कॉलेज के टाइम की बात है?
2: हाँ, कॉलेज के टाइम की बात है.
1: तो फिर उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ?
2: अरे पूछो मत,
1: जिसके लिए आपने दोस्तों से बात करनी छोड़ दी थी वो रही कि नहीं रही आपके साथ?
2: नहीं रही ना.
1: इसलिए हमेशा दोस्तों को आगे रखो, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते जाते रहते हैं. दोस्ती का कंधा काम आता है रोने के लिए. फिलहाल विल प्ले द 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 सेकंड्स. आई एम गोना गिव यू फ्यू कैटेगरीज. आपने तीन चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर.
0: 5 second rule.
3: Oh yeah.
1: Name 3 things that fly.
2: Aeroplane, kite and helicopter.
1: Very nice. 3 ladkiyon ke naam jo shuru hote hain with the letter S.
2: Sahana, Sushma, Sushmita.
1: To isme se kaun si thi jo chali gayi thi?
2: You nahi the.
1: 3 things that you don't like about your colleagues.
2: They lie, they don't do work on time.
1: Very nice.
2: They just do mistakes.
1: आप क्या HR हो सर जो आपको इतनी तकलीफ है अपने कॉलीग से?
2: हम कंप्लायंस से है तो थोड़ा.
1: Oh, कंप्लायंस डिपार्टमेंट. 3 मूवीज जिनके टाइटल में दिल आता है.
2: दिल तो पागल है.
1: नाइस.
2: दिल से.
1: टाइम खत्म हो गया. आप अच्छा खेल रहे हो लेकिन अटक गए इस पे. 3 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनका नाम शुरू होता है विद द लेटर वी. विवेक ओबेरॉय, विनोद खन्ना. इतना अग्रेशन मत दिखाओ, फाइन लग जाएगा अभी गाड़ी में. 3 ऐसी चीजें दैट यू पिक फ्रॉम अ होटल रूम.
2: टूथब्रश, शेविंग क्रीम एंड शेविंग किट.
1: नॉट बैड. 1-2 जवाबों में आप अटके, बट बाकी आप काफी हाजिर जवाब हैं. तो आपको डरने की जरूरत नहीं है. अगर मैंने कॉलेज वाली का नाम भी पूछ लिया आप घर जाके सब सेट कर लोगे सर लग रहा है. पर अच्छा खेला सुभाष आपने.
2: थैंक यू.
1: यू हैव अ ग्रेट ड्राइव बैक होम. आई होप यू एंजॉयड द गेम.
2: यस, अ लॉट. थैंक यू.
1: थैंक यू सो मच. तो फेसबुक वगैरह पे है फ्रेंड वो वाली जो चली गई थी कि नहीं? आई एम जस्ट आस्किंग. चलो बाय बाय. ये 5 सेकंड रूल आपने खेलना है. एक ही रूल है, कॉल करना 800-1062 पे.

0: Bollywood.
1: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों री? तेरे बाप का माल है?
2: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
0: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए GoChat कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: ए बुड्ढे,
2: नमस्ते।
1: पहले आप आदर कीजिए, आप गुस्सा नहीं होंगे।
2: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा? आप बात बताइए।
1: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
2: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा है। गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ रहा है। देखिए,
2: ये गुस्सा नहीं है।
3: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:09।
2: Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हमारे ऑफिस के रूप की रानी इस वक्त उमल क्वीन में बहुत मस्ती कर रही है। द ब्रांड न्यू स्टोर ऑफ बेबी शॉप इन मॉल ऑफ उमल क्वीन आज ऑफिशियल ओपनिंग हुई है। इट्स अ ब्रांड न्यू स्टोर एट मॉल ऑफ उमल क्वीन एंड इट इज बेबी शॉप। सो हेड ओवर विद योर एंटायर फैमिली। यू विल ऑल्सो एंजॉय एक्सक्लूसिव 25% ऑफ अक्रॉस द स्टोर एंड फर्स्ट 100 शॉपर्स को फ्री गिफ्ट भी मिलेगा। साथ में फेस पेंटिंग है, बलून बेंडिंग, लॉट्स ऑफ फ्री पॉपकॉर्न, डेट्स एंड कावा फॉर एवरीवन टू एंजॉय। सो गो एंड हैव अ लॉट ऑफ फन विद ज़ोहरा देयर एंड गो एंड चेक आउट द brand new store of baby shop at the mall of Umal Queen.
2: Hello boys, mere saath prom jaane ke liye tum sabko 3 departments mein brilliant hona chahiye, and that is good looks and good looks.
0: Naam hai Mansi on the Big Thrill only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: नमस्ते,
4: ओला,
3: अस्सलाम वालेकुम,
5: बोंजूर,
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। नो स्क्रोलिंग, विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
7: There's an excitement in the air. The whole city's waiting for the big match to start. And that's when Papa John's Pizza Tower makes the night complete. 3 pizzas and sides, all in one towering box, in 3 sizes. Plus ice cold Coke, enough for everyone. Order now on the Papa John's app. Papa John's, better ingredients, better pizza.
8: It's hot it up with big tickets.
9: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
8: 500,000 dirham winners and 1 million dirham big spin game.
9: Buy now at bigticket.ae.
10: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
11: Early in the morning.
0: The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zuleika Hospital, Jetor UAE, part of Elite Group Holding, and Henna Speedy Easy Hair Color.
12: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
13: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
1: 38 degrees है। बहुत गर्मी है आज। लो जाएगा अराउंड 34। फिलहाल ह्यूमिडिटी है 49% पर।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: हांजी, मैं हूँ मानसी एंड यहाँ पे योर चांस टू विन एक ऑल एक्सपेंसेस पेड स्टेकेशन सो दैट यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन विद योर एंटायर फैमिली, बीट द हीट इन स्टाइल, एंजॉय सम ग्रेट फूड. द प्रॉपर्टी इज स्टनिंग. वी आर टॉकिंग अबाउट द रिक्सॉस अलमरीद इन रसल खेमा. एंड ये सब करने के लिए आपको रजिस्टर करना जरूरी है. फॉर दैट यू हैव टू सेंड मी अ व्हाट्सएप BSS योर नेम्स टू 0543091062.
1: Participate in Summer Song Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
2: In next 5 minutes, I'll run the randomizer. We'll play a fun game here. It's called the Summer Song Contest. मैं आपको कुछ गाने सुनाऊंगी जो वेकेशन से, ट्रैवल से, बीच के आसपास शूट हुए हैं. A very holiday vibe kind of songs. आपने सिर्फ गाने गेस करने हैं. Whoever manages to give me the right answers, आश्राम उनका नाम जाएगा ड्रॉ में for this stunning family staycation. Plus, you'll walk away with open movie tickets and F&B vouchers. So, WhatsApp कीजिए. If at all you don't get a chance here, randomizer is not picking you, head to our Instagram page. वहाँ से direct entry मिलेगी for the Big Summer Surprises. That is 106.2 Big FM. Music allowed, Shisha.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: InsuranceMarket.ie. We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from InsuranceMarket.ie.
2: Sia, self-drive's new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
3: Ace Circuit, अपने कार के एसी की वाट लग गई. एकदम रापची कैसी कहाँ मिलेगा? बता ना.
4: टेंशन नहीं लेने का भाई. अलरास है ना?
3: अलरास बोले तो?
4: बोले तो. मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर. शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन. हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं.
3: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी. विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर.
5: Ready for an upgrade? Drive home your dream SUV with incredible offers from Jetour UAE. Buy now, pay in 2027, VAT on us, or 0% interest. Plus, enjoy a 1 million kilometer warranty. Get up to 10,000 dirhams cash back and free insurance on select models. With monthly installments starting from just 966 dirhams, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Alain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. TNC's apply.
0: The Big Mix miss kiya gaya.
6: तुम कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते.
7: एलाइशा क्या करते हो, क्या कर रहे हो?
8: मैं एक्चुअली फाइनेंस डिपार्टमेंट में होती हूँ और अभी लंच ब्रेक के लिए घर आई हूँ.
7: फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों से मुझे बड़ा डर लगता है.
8: हम कुछ भी नहीं करते
7: बेचारे. That's the problem. आप कुछ भी नहीं करते हो.

0: हो?
1: मैं एक्चुअली फाइनेंस डिपार्टमेंट में होती हूँ और अभी लंच ब्रेक के लिए घर आई हूँ।
0: फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों से मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हम कुछ भी नहीं करते बेचारे।
0: That's the problem. आप कुछ भी नहीं करते हो जब करना होता है।
1: तो
0: अगर आपने बताया कि श्रद्धा कपूर के फैन हो, ये डायलॉग कंप्लीट करो, वो स्त्री है।
1: नहीं, मैं नहीं हूँ।
0: अरे वो स्त्री है का डायलॉग कंप्लीट करो। वो स्त्री है डैश डैश डैश है।
1: एकदम प्रेशर पे मैं भूल गई।
0: इतनी लंबी लंबी आपने छोड़ी है। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं फ्री टाइम ऑब्सेशन। एक डायलॉग कंप्लीट करो। मैं नर्वस हूँ, मैं नहीं बोलती।
1: अरे इवन मैं उनके फादर का नाम भी भूल गई।
0: फादर का नाम भूल गई।
2: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 PM. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Hey, जल्दी हटा तेरा खटारा। चल हटा।
4: हाँ।
3: अरे जल्दी हटा यार चिंगा।
4: हाँ हाँ।
2: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: Still a 42-minute delay if you're on Sheikh Zayed. It is packed like how. There's heavy traffic near Gisez, Dera. Further, if you're going towards Sharjah, again, ek ghante tak ka delay dikha raha hai. Traffic trailing very, very slow, kind of standstill. Agar aap Fahidi ke aas paas hai is waqt, there's traffic near Kurama, Udmetha. And heavy traffic near Business Bay, DIFC. A 42-minute delay, toh maine aapko bataya puri Sheikh Zayed Road ka. But yahan se toh nikalna bahut mushkil lag raha hai is waqt. There's also traffic on the Sheikh Mohammed bin Zayed. Not really bad. Filhal, it's showing a 29 to 30-minute delay. Anything else you'd like to report, toh mujhe bataiye. 800-1062 पे।
2: Sia, self-drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
6: गुस्से से बोलेगी, नहीं जाऊंगा। प्यार से बोलेगी, मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे, जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई हो, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, ये है बिग थ्रिल. मैं हूँ मानसी. काम की बात करते हैं. वी ऑल वांट टू सेव मनी, राइट? एंड स्पेशली व्हेन यू आर रेंटिंग कार्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर द मोस्ट अफोर्डेबल कार रेंटल, देन सेल्फ ड्राइव डॉट ए ई इट इज. दे've got the most affordable car rental in the UAE right now, starting from just 899 dirhams a month. बिल्कुल सही सुना, 899 dirhams a month. At this price, paying more just doesn't make sense. There's no ownership, no long-term commitment, no stress at all. Just pick your car and drive. Look for selfdrive.ae. You can download the app. It's very easy and hassle-free to use. Selfdrive, your car, your prize, your way.
0: Beat 106.2, fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: ये ना गाना सुन के मन करता है कि शादी वादी कर लो, बट फिर जितनों की हुई है उनकी कहानियां सुन के लगता है कि कोई बात नहीं, सिर्फ गाना ही सुन लो।
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Good evening, ये है Big Thrill, मैं हूँ Mansi। अभी अभी आपने सुना कि कैसे राहुल जो है वो लेके गए हैं ओपन मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स, प्लस हिज नेम गेट्स इनटू द ड्रॉ फॉर दिस फैंटास्टिक फैमिली स्टेकेशन। यू ऑल्सो हैव अ चांस टू बीट द हीट इन स्टाइल, मेक सम लवली मेमोरीज विद योर फैमिली, एंजॉय सम good food and all of this absolutely free when you register for the big summer surprises that has been made possible by our presenting sponsor Skechers, title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixos Almarid in Russell Kema. Do not forget kal bhi once again I'll be playing the same game at the same time and aapke paas bhi mauka hai shortlist hone ka. Until then keep registering. WhatsApp karna hai BSS apna naam to 054-309-1062. By any chance agar aapko lag raha hai ki yaar mera to naam hi nahi aa raha hai, to direct entry aapko Instagram se mil sakti hai. Head to our Insta handle which is 106.2 Big FM. Filhal coming up break your spar. छा गई है बंदी, छा गई है मोस्ट गूगल्ड सेलिब्रिटी दिस वीक, जैस्मिन सैंडलेस। इफ यू डोंट नो व्हाई, आपको बताती हूँ इन जस्ट अ बिट। कमिंग अप राइट हियर ऑन द बिग थ्रिल, मैं हूँ मानसी।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: जैस्मिन सैंडलेस की आवाज मेरी आवाज सुनते हैं 5 से 9. दिस इज द बिग थ्रिल ऑफ मानसी. द मोस्ट गूगल्ड सेलिब्रिटी दिस वीक हैज टू बी जैस्मिन सैंडलेस. आई एम श्योर यू ऑल्सो सीन द वायरल वीडियो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड आई टोटली बिलीव विमेन इन लव शुड लुक लाइक जैस्मिन सैंडलेस. Totally owning it, totally unapologetic about being in love. If you haven't seen the clip, let me show you what she did while she was performing on the stage. She introduced the world to her fiance.
2: This is the man who put everything on it. This is my man, everybody.
1: Hazaro. मैं ये वीडियो देख चुकी हूँ. दिस इज माय मैन. यू नो व्हाट, ये क्या है मॉडर्न डेटिंग में सॉफ्ट लॉन्च करना. लड़के का एल्बो दिखाते हैं, घड़ी दिखाते हैं, समझ नहीं आ रहा है कि बॉयफ्रेंड है कि मूवी का टीजर है. व्हेन यू फाइंड द राइट मैन, फ्लॉन्ट हिम लाइक जैस्मिन सैंडलेस. मुझे जब मिलेगी ना ऐसी मोहब्बत, तो मैं सीधा HD 4K प्रिंट में लॉन्च करूंगी. देयर इज नो सॉफ्ट लॉन्च हैपनिंग. इफ यू आर इन लव, दिस इज हाउ बोल्ड यू शुड बी. यू हैवंट सीन द वीडियो येट, प्लीज वॉच इट. एंड गर्ल्स, जैस्मिन सैंडलेस तुम्हें और मुझे उम्मीद दे रही है. इफ यू हैव गिवन अप ऑन डेटिंग एंड यू आर लाइक के हाँ बस अब तो मैं 15 कुत्ते पालूंगी एंड आई विल बी द डॉग मॉमी, देयर इज लव फॉर अस. वी जस्ट हैव टू वेट फॉर आवर वर्जन ऑफ चौधरी साहब टू कम. बट फिलहाल व्हेन आई कम बैक, समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर फुटबॉल लवर्स.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो, सुन रहे हो ना?
3: हे,

0: खिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2

0: बॉयज, मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: 2 या 4?
2: 4।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यही 4-5 दिन में।
3: 4 या 5?
2: 5।
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
1: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. What if this summer came with a surprise, a big surprise? This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Hospitality partner Rixos Al Mayrid Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
5: नमस्ते।
6: ओला।
5: अस्सलाम वालेकुम।
6: बोंजूर।
7: नी हाओ।
4: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर AI असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
1: The Big Chill.
8: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Big 106.2.

0: बॉलीवुड
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 38 डिग्रीज लो जाएगा अराउंड 33, फिलहाल ह्यूमिडिटी है 49% पर।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही.
3: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरा, बट प्लान होगा आपका. फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे 3 to 6 PM. क्योंकि अगर जोरा ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया.
4: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Zora. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
5: Love, lo-fi and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on the big chill. On Big 106.2, the beat of Bollywood.

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।